0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ है। संते हैं। नमस्कार आपको अभी।
1: नमस्कार रिया, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। सुबह के पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। ICT मंत्रालय के तहत कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मॉरिशस, जिसे आमतौर पर सेट MU के नाम से भी जाना जाता है, उसने ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी के मामलों में अचानक आई तेजी को लेकर अपनी चेतावनी जारी की है। कुछ दिन पहले वकील आशिक तुआबाली साइबर क्राइम के जाल में फंस गए थे। इस मामले की शिकायत CCID की साइबर क्राइम यूनिट में दर्ज कराई गई। मॉकस प्लस प्लेटफॉर्म के 2026 के आंकड़ों के अनुसार ऑनलाइन स्कैम और धोखाधड़ी के 242 मामले, पहचान की चोरी के 217 मामले और फिशिंग के 15 मामले दर्ज किए गए। नैडेक यानी कि नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष की भविष्य की दिशाओं में की दिशाओं को लेकर अकेले अंतिम फैसले नहीं लेगी। ये स्पष्टीकरण शुक्रवार सुबह इसके CEO कुणाल नायक ने हमारी टीम के साथ मॉर्निंग इंटरव्यू में दिया। उनके अनुसार नैडेक की भूमिका मुख्य रूप से परामर्शों का समन्वय करना, डेटा का विश्लेषण करना, विभिन्न संबंधित निकायों के साथ मिलकर काम करना और सिफारिशें तय करना आदि शामिल हैं। मॉरिशस में अनुसंधान और नवाचार यानी कि इनोवेशन के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है। नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बिल को पारित कर दिया गया है, जिसे वैज्ञानिक अनुसंधान को केंद्रित करने और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान मंत्री कविराज सुको के अनुसार इस सुधार का उद्देश्य मॉरिशस को एक अधिक रणनीतिक निकाय प्रदान करना है। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि बैंकॉक में शनिवार को एक ट्रेन की टक्कर हुई, जिसके बाद आग की चपेट में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि जैसे ही आग ने बस और आसपास के वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया, दमकल कर्मियों और बचाव दलों को मौके पर भेजा गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस टक्कर में एक ट्रेन, बस और कारें तथा मोटरसाइकिलें शामिल थी। तो ये थी अब तक की खबरें और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। अगले 24 घंटों के लिए

0: का है। ऊंचे इलाके पर कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान ऊंचाई पर थोड़े से बादल घिराएंगे और रह रहकर बरसात होगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठाएंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय लगभग 6:30 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।
1: You're listening RM Free Radio.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. अभी अभी आपने कुरान मजीद की चंद आयतों की तिलावत समाअत की, पेश खिदमत है एक हमद, आइए समाअत करते हैं।

सामीन मोहतरम, कुर्बानी को महज रस्म न समझो बल्कि इबादत समझ कर अदा करो। नियत को खालिस रखो क्योंकि अल्लाह ताला नियतों को देखता है। कुर्बानी के जानवर का इंतखाब अच्छा और सेहतमंद करो। कुर्बानी के गोश्त को मोहताजों और गरीबों में ज़रूर तकसीम करो। इस अमल के ज़रिए ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इताअत को याद रखो। फजूल खर्ची और दिखावे से बचो। कुर्बानी के अय्याम में ज़िक्र इलाही की कसरत करो। अपने अहलवयाल को भी इस इबादत की अहमियत बताओ। कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करो। दुआ करो कि अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए और हमें इखलास अता करे। आमीन सुमामी। या अल्लाह, हुज्जाज कराम को अपनी हिफाजत में रख और हर आफत से बचा। उन्हें सुन्नत के मुताबिक हज अदा करने की कामिल तौफीक अता फरमा। उनकी नियतों को खालिस कर दे और उनकी इबादत को शर्फ़ कबूलियत बख्श दे। या अल्लाह, उनके दर्जात बुलंद फरमा और उनके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दे। या रब्बुल आलमीन, सबको हज मबरूर अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। सामीन मुहतरम, हम सबाल खैर प्रोग्राम के आखिर तक पहुँच चुके हैं। आइए रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इंशाअल्लाह समीर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु।

0: 94.96
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Dini Siyaranga.

0: मंडली
1: कसकाय मंडली
2: कसकाय मंडली
3: कसकाय मंडली
4: All day, all night, right here on your one and only station.
5: RM3 Manoranjan Radio.

समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोर प्रणाम। इस समय रेडियो मनोरंजन पर आप भक्ति में शक्ति कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए श्री गणेश करती हैं।

श्रोताओं, सुबह शाम हम सब प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसका महत्व क्या है, क्या हम जानते हैं? जीवन के इस भाग दौड़ में इंसान दिन भर बाहर की दुनिया देख लेता है, पर अपने अंदर झांकना भूल जाता है। सुबह और शाम की प्रार्थना हमें इस भूल से वापस लाती है, हमें हम तक और ईश्वर तक पहुंचाती है।

की प्रार्थना एक नई शुरुआत होती है। जब प्रभात की पहली किरण धरती को छूती है तब मन को भी एक नया प्रकाश मिलता है। सुबह प्रार्थना करने से लगता है जैसे परमात्मा खुद हमें हाथ पकड़कर कहता हो, आज का दिन तुम्हारे लिए एक वरदान है, इसे शुभ भाव से जियो।

सुबह की प्रार्थना से सोए हुए संकल्प जाग जाते हैं, मन हल्का हो जाता है और दिन भर के काम एक पवित्र ऊर्जा के साथ पूरे होते हैं। ये हमें स्मरण कराती है कि हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो जाए, दिन की पहली सांस प्रभु को याद करके लेना ही सबसे बड़ा पुण्य है।

की प्रार्थना जीवन का विश्राम होती है। श्रोताओं, दिन भर हम कितने ही कठिनाइयों से क्यों ना गुजरे हो, कितने ही उलझनों का बोझ दिल में क्यों ना हो, पर जैसे ही शाम का अंधेरा चमक कर सामने आता है, प्रार्थना हमें शांति का एक गहरा आश्रय देती है। शाम की प्रार्थना कहती है, जो हो गया उसे प्रभु को समर्पित कर दो और रात की शांति में अपने मन को धुलने दो। शाम की प्रार्थना से मन का बोझ हल्का होता है। अपराध बोध, चिंता और बेचैनी धीरे धीरे पानी की तरह बह जाते हैं। रात की नींद भी तभी गहरी होती है जब मन प्रभु के नाम से हल्का कर दिया जाए।

सुबह और शाम की प्रार्थना का सार यही है। सुबह हम ईश्वर से शक्ति मांगते हैं, शाम हम अपना सर्वस्व उन्हें समर्पित कर देते हैं। सुबह हम अपनी कोशिशों का संकल्प लेते हैं और शाम उन कोशिशों का फल प्रभु के चरणों में रख देते हैं। श्रोताओं, प्रार्थना कभी समय की पाबंद नहीं होती, पर सुबह और शाम का समय प्रकृति के सबसे शुद्ध पल होते हैं, जहां हवा पवित्र होती है, मन शांत होता है और प्रभु हमें सबसे करीब महसूस होते हैं।

जाते जाते एक श्रद्धा भरा संदेश, जो दिन प्रभु के नाम से शुरू हो और रात उनके नाम से पूरी हो, उस जीवन में ना अंधेरा टिका है, ना दुख, ना डर और ना ही बेचैनी। शुभ दिन, प्रणाम।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। मॉरिशस में सांस से जुड़ी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 4 से 10 मई के बीच इसके 3,400 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि इससे पिछले हफ्ते ये संख्या करीब 3,000 थी। आने वाले दिनों में ठंड के बढ़ने और कई तरह के मौसमी वायरस फैलने के कारण ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को कोंगो में फैली इबोला की नई बीमारी को देखते हुए दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा अलर्ट जारी किया। ये बीमारी इबोला के एक दुर्लभ और बेहद खतरनाक रूप बूंदी बुग्यू के कारण फैली है। फिलहाल इस नए रूप से बचने के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त टीका मौजूद नहीं है।

0: कोंगो के इतुरी इलाके में अब तक कई संदिग्ध मौतें भी हो चुकी हैं। इस खतरे को देखते हुए मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बंदरगाह और हवाई अड्डे पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कोंगो से आने वाले सभी यात्रियों पर 21 दिनों तक खास नजर रखी जाएगी। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग्स कंट्रोल यानी कि नैडेक मॉरिशस में मादक द्रव्य के खिलाफ संघर्ष की भविष्य की दिशाओं को लेकर अकेले अंतिम फैसले नहीं लेगी। ये स्पष्टीकरण शुक्रवार सुबह इसके सीईओ कुनाल नायक ने हमारे सहयोगी सांताना पोसिनो के साथ मॉर्निंग इंटरव्यू में दिया। उनके अनुसार नैडेक की भूमिका मुख्य रूप से परामर्शों का समन्वय करना, डाटा का विश्लेषण करना, विभिन्न संबंधित निकायों के साथ मिलकर काम करना है और सिफारिशें भी तैयार करना है। विशेष रूप से नेशनल ड्रग मास्टर प्लान और गांजे सहित ड्रग्स से जुड़ी नीतियों पर चल रहे विचार विमर्श के ढांचे के ऊपर। लेकिन कुणाल नायक ने इस बात पर जोर दिया कि अंतिम निर्णय संबंधित अधिकारियों, सरकार और संसद का होगा। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि इटली के मोदिना शहर में शनिवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार चालक ने जानबूझकर अपनी गाड़ी फुटपाथ पर चल रही राहगीरों पर चढ़ा दी। इस दर्दनाक घटना में कम से कम 7 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी कार से बाहर निकला और हाथ में चाकू लेकर भागने की कोशिश करने लगी, परंतु जिसके मौके पर मौजूद बहादुर नागरिकों ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में सुख समाचार। शोक समाचार सुनते हैं। मो सेलमो ले पाल्मिये ट्रॉबुचिक में 60 साल की 60 इयर्स ओल्ड की श्रीमती सरस्वती सुंदर पैदाइशी नाम गुनावा और जिन्हें सब लोग बहन जी के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनके पति श्री सुरेश सुंदर के घर मोसेलमो ले पाल्मिये त्वाबुचिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM नंबर 34 लातू के निक पोटली में 74 साल के 76 years old के श्री इसुप दहारे जिन्हें सब लोग इसुप के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी वंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज सपहर के 3 बजे उन्हीं के मकान नंबर 34 लातू के निका पोतवी से निकालकर दफनाने के लिए सैमोंटे का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल दिस आफ्टरनून एट 3। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: You're listening to RM3 Radio.

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: कबूतर जा जा जा मैंने प्यार किया। 12:14 हुए हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, आदाब, आप सभी कैसे हैं? वैसे मैं ठीक ठाक हूँ, आपसे मिलने आ गई हूँ। देवीना है माइक पर, अभी से लेकर 3 बजे तक सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान। वैसे बाहर का नज़ारा देखेगा, समा है आशिकाना और हल्की सी बारिश कभी कुछ इधर उधर, और साथ में कुछ गर्मी भी और सर्द हवाएं, क्या कहना। सो सर्दी को वेलकम करते हैं प्यार से सुहाना सफर प्रोग्राम में। और आज ना हमने सोचा क्यों ना, हम कबूतर जा जा जा वाला गाना जब सुन रहे थे ना, तो हमने सोचा क्यों ना उस ज़माने में, उस ज़माने को याद करते हैं जहाँ पर हम खत लिखा करते थे, चिट्ठियाँ, लेटर्स, प्रेम पत्र या दोस्तों को खत। याद है वह ज़माना? वो ज़माना भी क्या ज़माना था दोस्तों, जब मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लेकिन दिलों के रिश्ते फिर भी बेहद करीब थे, है ना, क्योंकि उन रिश्तों को जोड़ती थी एक छोटी सी प्यारी चिट्ठी, किसी अपने को लिखावट, स्याही की खुशबू, डाकिये की घंटी और लिफाफे में छुपे ढेर सारे एहसास। वैसे दोस्तों, कहा जाता है कि जो चिट्ठी होती है ना, सिर्फ कागज़ नहीं होती, वो किसी का इंतज़ार होती है, किसी की मोहब्बत होती है, किसी माँ की दुआ होती है, तो किसी सैनिक के लिए घर की याद होती है। तो बस क्यों ना आज इस स्पेशल विषय हमरा रखें, खत, चिट्ठी, प्रेम पत्र, पत्र, लेटर्स। क्या यादें जुड़े हैं खतों से, ज़रा हमसे शेयर कीजिएगा ऑन 4028070402 8076 पर। साथ में मैसेजेस के लिए 5250-6200-5250-6200। और खतों से पर आधारित अगर गाने हो तो बस क्या कहना, तो बस हम ये चाहेंगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा इस प्रोग्राम में, सुहाना सफ़र प्रोग्राम में। और चिट्ठियों के पर बात करेंगे, खतों पर बात करेंगे। क्या आपके पास अभी भी चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं? बार बार पढ़कर यादें ताज़ा करते हैं। सो ये गाना तो बेशक हमें बजाना ही है। फिल्म है संगम, आप सबों के लिए।

0: खाना सफर, खाना सफर।
1: 12:25 और एम फ्री रेडियो मनोरंजन से आप जुड़े हुए हैं सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान 12 बजे से लेकर 3 बजे तक हमेशा रविवार को हम मिलते हैं। और आज है स्पेशल, हम बात कर रहे हैं खत पर, लेटर पर, चिट्ठियों पर, सब कुछ जो हम भेजते थे पहले ना, हम कैसे दिल का बयान करके हम लिखते थे, बस आज उन पर आधारित अगर हो सके तो वो गाने हम चलाने वाले हैं। वैसे पहले जब डाकिया गली में आता था ना, तो लोग दौड़ कर दरवाजे तक पहुंच जाते थे और हर किसी को इंतज़ार रहता था शायद आज कोई अपना याद कर रहा हो। और मिलना मिलाना तो रेयरली होता था, कहाँ हम साउथ से निकलकर नॉर्थ की ओर जाएंगे, अगर कोई शादी हो, कोई त्यौहार हो तभी मिलना होता था, नहीं तो बस चिट्ठियाँ भेजते थे एक दूसरे को हाय हेलो बोलने के लिए, और बताते थे कि एक महीने के बाद हमने चिट्ठी भेजी है तो क्या क्या किया एक महीने के से पहले दौरान, 2 महीने के बाद, बस ऐसे ही हम लोग यादें जो हैं ताज़ा करते थे एक दूसरे को, जैसे पेन फ्रेंड हुआ करते थे। तो क्या ज़माना था। और कई प्रेम कहानियां जो हैं चिट्ठियों से शुरू हुई, कई रिश्ते चिट्ठियों से और गहरे बने, और फिल्मों में भी चिट्ठियों का बड़ा सुंदर इस्तेमाल हुआ है, कभी प्रेम पत्र, कभी माँ का संदेश, तो कभी जुदाई का दर्द। तो बस ऐसे ही हमारा जो सिलसिला है बढ़ता जाएगा चिट्ठियों पर। मगर इससे पहले विश्वानी जी ने हमें मैसेज भेजा है बहुत सवेरे ही, विश्वानी डुमन जी और वाकुआ एक गीत है सुनना चाहते हैं, फिल्म है 16 शुक्रवार, और ये जो गाना है अपने ज़माने में कितना मशहूर हुआ करता था, रविंद्र जैन साहब साथ में चंद्रानी मुखर्जी, एक नई कई जन्मों से तेरा मेरा साथ है। तो बहन इंदिरा के लिए शारदा, सहेली नीला, प्रतिभा शोभा।

0: खाना सफर खाना सफर
1: जहां सनम को खत लिखा और दिल धक धक करने लगा और वो एहसास कि अब चिट्ठी पढ़ कर वे कैसे वे जैसे क्या कहेंगे क्या सोचेंगे कैसे रिएक्ट करेंगे ये सब सोचकर ना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता था। एक छोटा सा खत लेकिन उसमें छुपे होते थे हजारें जज्बातें और जब मम्मी की याद आती थी तो मम्मी को याद में यही रख प्रीमा मैं यहाँ ठीक हूँ आप अपनी दवा समय पर देना आप क्या कर रही हैं आपकी याद आ रही है आपके खाने याद आ रहे हैं बस ऐसे ही लिखते थे ना या दोस्तों को छुट्टियाँ कैसे बितानी हैं बहुत महीने पहले ही खत लिख देते थे और प्लान बनाते थे क्योंकि मोबाइल नहीं था यार तो बस प्लानिंग जो था वो 100% होना चाहिए था नहीं तो अगर चुक गई ना तो प्लान वो जैसे इस पर पानी फिर जाएगा। बस खत में क्या लिखना था हम सोच समझ कर ही लिखते थे और साथ में जो पते की बात ये है ना कि लिखते लिखते जो स्पेशली जो बच्चे हैं ना जो टीनेजर्स थे खत लिखते लिखते इसके लिए उन्हें पढ़ना था वो पुस्तकें पढ़ते थे बुक्स पढ़ते थे और उसमें जो जितने एक्सप्रेशंस थे वे सब याद करके ना चिट्ठियाँ में लिखते थे और साथ में इससे क्या होता था लिखाई की या वो प्रैक्टिस भी हो जाती थी। काश वो दिन लौट आए। और प्रेम पत्र का क्या कहना उन्हें बार बार पढ़ा जाता था तकिए के नीचे छुपा कर रखा जाता था और आज व्हाट्सएप के मैसेज सैकड़ों में आ जाते थे आ जाते हैं लेकिन शायद वो अपनापन वो इंतज़ार वो खुशी कहीं पीछे छूट गई है ना। तो ऐसे में हम बात कर रहे थे श्यामा जी के साथ श्यामा रघुमनंदन जी और वो हैं खोंगुप से और वे कह रही हैं कि उन्हें भी वो ज़माना याद था प्रतीक्षा वो प्रतीक्षा और वे कहती हैं कि हर एक चिट्ठी के साथ कोई कहानी छुपी होती है और जैसे कहते हैं ना गुलाब रख कर चिट्ठियों में भेजा करते थे परफ्यूम लगाते थे और चिपकाने के लिए वो मुंह का ही इस्तेमाल करते थे और जब प्यार में पड़ जाते थे ना तो लिपस्टिक से चूमते थे लिपस्टिक का जो मार्क था चिट्ठी पर छोड़ते थे क्या ज़माना था। और ऐसे में ये गाना उनको सुनना है तो बस श्यामा जी वे कह रहे हैं फिल्म है धर्मपुत्र और ये जाएगा भाई भैया जयप्रकाश के लिए भाभी है नम्रता केशव युदेश सहेलियाँ हैं विश्वानी रुकी विना रामफल नंदिनी ओकलू और साथ में जितने लोग इस गाने को पसंद करते हैं बस इस गाने का आप मजा लीजिए और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आशा जी की मदमस्त आवाज़।

जहाँ जीवन दुख सुख का संगम है, और ऐसे में ये जो गाना है ना, इसकी मांग की आज रविंद्र जी और सैं पिए, उन्हें ये गाना अच्छा लगता है। धर्म पाजी के धर्मेंद्र साहब के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हमेशा उन्हीं पर पिक्चराइज गाना सुनना पसंद करते हैं। तो रविंद्र जी और साथ में उनकी जो दो बहनें हैं माला और मीता, ये गाना आपके लिए था। अगला गाना जो है हमें ले जाएगा समाचार की ओर, और ये गाना इसकी मांग की है सुदेवी ऑफ मुक्का, फिल्म है अनमोल, दीवानी में दीवाना तू, लता जी की आवाज़ में उनके पति और सभी बच्चों के लिए। और वैसे आज का स्पेशल जो टॉपिक है, एक ऑन एंड ऑफ हम बजा रहे हैं, खतों पर आधारित, लेटर्स पर आधारित, और इनके साथ कितनी सारी यादें आपके पास हैं, बस हमसे शेयर कर सकते हैं 4028070 या फिर मैसेजेस द्वारा 5250-6200। और क्या आपने कभी किसी को चिट्ठी लिखी है? आपने किसी की चिट्ठी से चिट्ठी ली है और इसके बाद क्या क्या किया है हमें बता सकते हैं? हम आई एम श्योर कि आपके पास बहुत फ़नी स्टोरीज होंगे, कुछ जज्बातों से भरे होंगे, या किसी की लिखी हुई चिट्ठी आज भी संभाल कर रखी हुई है, बस हमारे साथ शेयर कीजिएगा ना, क्योंकि कुछ यादें मोबाइल में नहीं दिल में बसती हैं। अगर आपके पास भी कोई प्यारी चिट्ठी की याद है तो हमें ज़रूर बताइए। और अभी के लिए हम सुदेवी जी की मांग पर ये गाना चलाते हैं और मिलते हैं बहुत जल्द समाचारों के बाद सुहाना सफर प्रोग्राम और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर।

0: RM3 Radio. RM3 Radio.
1: You're listening to RM3 Radio. Mana.

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आशिता से। आशिता आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मॉरिशस में सांस से जुड़ी बीमारियों जैसे सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 4 मई से 10 मई के बीच इसके 3,400 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि इससे पिछले हफ्ते ये संख्या करीब 3,000 थी। आने वाले दिनों में ठंड के बढ़ने और कई तरह के मौसमी वायरस फैलने के कारण ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। अगर किसी को पहले फ्लू या सर्दी जुकाम हो चुका है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसे दोबारा ये बीमारी नहीं हो सकती। डॉक्टरों विशेषज्ञों ने इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखने के लिए अच्छी और सेहतमंद जीवन शैली यानी साफ सफाई और सही खान पान अपनाने की सलाह दी है। ब्लू इकोनॉमी और मत्स्य उद्योग मंत्रालय को इस पर पूरा भरोसा है और मछुआरों को लगूनों से आगे बढ़कर गहरे समुद्र में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए मंत्रालय ठोस कदम भी उठा रहा है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसे पिछले शुक्रवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसके तहत उन मछुआरों को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके नाव की आउटबोर्ड मोटो मरम्मत के लायक नहीं रह गई है। इस मदद को लाभार्थियों ने एक बड़ी राहत के रूप में लिया है और इसका सकारात्मक स्वागत किया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान देने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को कोंगो में फैली इबोला की नई बीमारी को देखते हुए दुनिया भर के लिए दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट जारी किया है। ये बीमारी इबोला के एक दुर्लभ और बेहद खतरनाक रूप बंडी बगियो के कारण फैली है। फिलहाल इस नए रूप से बचने के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त टीका मौजूद नहीं है। कोंगो के इतुरी इलाके

0: में अब तक कई संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं। इस खतरे को देखते हुए मॉरिशस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बंदरगाह और हवाई अड्डे पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। कांगो से आने वाले सभी यात्रियों पर 21 दिनों तक खास नजर रखी जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयरलैंड के मशहूर एमएमए कोनो मैकग्रेगर में वापसी करने जा रही है। यूएफसी ने शनिवार को ऐलान किया कि 11 जुलाई को लास वेगास में उनका मुकाबला अमेरिका के मैक्स हॉलोवे से होगा। ये इन दोनों के बीच एक दोबारा मुकाबला होगा। आपको बता दें कि मैकग्रेगर जुलाई 2021 के बाद से पहली बार रिंग में उतरेंगे। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहिए, सुनते हैं शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। नंबर 34 लातू केनिक पोर्ट लुइस में, नंबर 34 लातू केनिक पोर्ट लुइस में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड की जनाब इसुप दहारी, जिन्हें इसुप के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज शाम 3 बजे इनके मकान लातू केनिक पोर्ट लुइस से उठाकर दफनाने के लिए सहमौते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: You're listening to RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: सुहाना सफर।

जहाँ 1:16 हुए हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। इस दूसरे आवर में सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान देविना है आपके संग 3 बजे तक। जैसे कि आपको पता ही है कि अभी से 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हम आपके रिक्वेस्ट पर ध्यान देते हैं, कुछ आपके गाने कुछ हमारे, और 2 बजे के बाद हम 90s और ऊपर के गाने चलाते हैं। इसमें भी आपका हम डेडिकेशंस करते हैं और आपका साथ देते रहते हैं। मौसम वैसा भीगा भीगा सा है कुछ इलाकों में और लंच टाइम ले रहे हैं, तो बस बोन अपेटी शुभाहार। हमें सुनते सुनते अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो ये हम अपने आप को वेरी लकी समझते हैं कि आप के जीवन में हमने अपनी जगह बना ली और आप इंतज़ार करते हैं, आप साथ देते हैं। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच दिल से। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चिट्ठियों पर, लेटर्स पर, खतों पर, जो वैसे बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं इन सब से। कुछ अभी तक कुछ लोग अपनी जो चिट्ठियां हैं ना, वो संभाल कर रखे हुए हैं और बार बार उनको पढ़ कर रो लेते हैं या फिर खुश हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, उस समय जब हम चिट्ठी लिखते थे जज्बातों से और ऐसा लगता था कि पत्र पढ़ कर ना वो बंदा व वो बंदी हमारे सामने है और हमें कह रहा है, और इसमें अलग सा मिठास होता था, अलग सा वैल्यू होता था जज्बातों का। और वैसे रविवार का दिन है सिर्फ आराम का नहीं बल्कि अपने दिल को खुश रखने का भी दिन होता है। साथ में अगर आपके पास कुछ चिट्ठियां हैं ना, प्यार भरे, या कोई है जो आपसे बिछड़ गया हो या अभी तक आपके पास है, अगर आपकी शादी हुई है, चिट्ठी लिखते लिखते जवानी में शादी भी हो गई और आज भी अगर आपने संभाल कर रखी हैं वो चिट्ठियाँ जिनमें प्यार हैं, जज्बात हैं, तो बस ये सबसे बड़ा खजाना है मेरे दोस्त।

आप दोस्तों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, या बस अकेले हैं, हमसे जुड़ने के लिए आप बेकरार हो रहे हैं और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर. सो आपके नाम करेंगे अगला गाना और साथ में ये जो गाना है बस आपको नचा देगा. मूड है नाचने का. रविवार का दिन जो है कुछ लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक होता है, कुछ लोगों के लिए बस मज़े लेने का दिन होता है. और याद रखिए संगीत हमेशा आपका साथी है और एम फ्री रेडियो मनोरंजन भी आपका साथी है. हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है, मगर हंस कर किया गया काम आपकी पहचान बनाता है. और पेश है एक शानदार सा गाना जो है रफ़ी साहब की आवाज़ में, और ये फिल्म है आमने सामने, और इसकी मांग की है वाकवा से नंदलाल जी, और वे कह रहे हैं बहुत दिन हुए ये गाना नहीं सुना. ओके, तो नंदलाल जी आपके लिए, दोस्तों के नाम, अब सभी और एम फ्री लिसनर्स के लिए.

ये प्यारा सा गीत हम करना चाहेंगे अनीता जी की ओर से, फी कॉम्फ्लेक्स से है और उनकी भतीजी जो है मालिनी और उनके जो पति है संजीव का वेडिंग एनिवर्सरी है और ये गाना वे मांग रही हैं सभी जो परिवार की ओर से। और बस अनीता जी ये भी याद कर रही हैं कि उस समय जब वो पहले एक खास दोस्त था उसने एक चिट्ठी लिखी थी, तो बस आज भी उनकी याद आती हैं और लोग चले जाते हैं मगर उनकी जो चिट्ठियां हैं रह जाती हैं। बस सभी जो लिसनर्स हैं हमारा साथ दे रहे हैं, अगर आप अपनों के साथ हैं तो जन्म जन्म का रिश्ता आपको मुबारक हो।

जलन जलन का साथ बरकरार रहे, बस अपनों का प्यार आपको हमेशा मिले, यही हमारी है दिली तमन्ना। और आप दोस्तों से हमारी बात होती रहे, मुलाकात तो नहीं होती मगर दिल से हमारी मुलाकात होती है रेडियो पर। थैंक यू सो मच टू बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली और एम फ्री रेडियो मनोरंजन, और साथ में हमको आपके घर में जगह देने के लिए शुक्रिया जी। देविना है आपके संग, और अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं एक और गाने की ओर। बस सुहाना सफ़र प्रोग्राम में पुराने जो फिल्में गाने एक दो

हम जोड़ते हैं 70s, 90s के भी, 80s के भी. और ये जो गाने हैं सिर्फ गाने नहीं होते, वे पूरी कहानी होते हैं. जैसे वो उनमें मोहब्बत की मिठास होती है, ज़िंदगी की सीख होती है. और आज के दौर में सब कुछ तेज़ हो गया है, लेकिन पुराने गीत जो हैं आज भी दिल को सुकून देते हैं, है ना. वैसे कहते हैं पुराने गाने हमें सिर्फ बीता वक्त याद नहीं दिलाते, बल्कि वो लोग भी याद दिलाते हैं जो कभी हमारे बेहद करीब थे. और ऐसे में कौन है सबसे हमारे दिल के करीब? अगर कोई है तो वो है माँ. माँ जो है हमारी दोस्त होती हैं, हम सफ़र होती हैं, कभी कभी हमको डांटती हैं, चिल्लाती हैं, मारती भी हैं, मगर हमारे अच्छे के लिए. और आज जो ज़माना चल रहा है, अगर आप बच्चों को कुछ कह दिए तो वे ऐसा दिखाते हैं कि जैसे वो आपका कोई हक ही नहीं होता. मगर अपने ज़माने में जब माँ कुछ कहती थी ना, तो माँ की बातें अच्छी लगे या बुरी लगे, मगर हम उनको करने की पूरी कोशिश करते थे. तो काश वो ज़माना लौट आए, मगर नहीं लौटा सकते हैं ये ज़माना. मगर ये जो गाने हैं आपको सुना सकते हैं. और ऐसे हैं, मैं माँ की याद उनको सता रही है नंदा जी ऑफ पाई. वे कह रही हैं माँ की याद आ रही है. सभी मम्मीज जो हमारा साथ दे रही हैं आपके लिए साथ में. कुछ अगर रविवार का दिन है, आपकी मम्मी है आपके पास, अगर बच्चे लोग आपकी मम्मी है आपके पास, तो उनके साथ कुछ समय बिताइए ना, क्योंकि बाद में इस समय को और जीने का मौका ना मिले ना मिले. तो माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, ये गाना है नंदा जी के लिए पाई से. चार बेटों के नाम, तीन बेटों के नाम अविनाश हैं, जी हाँ, अभिषेक, और साथ में है आशील जिसका नई नई शादी हुई है, और पत्तू जो है दिव्या, और बेटी है अश्विना, नाती गुल्लू, अरवी, पुनीता, गणेश फैमिली के लिए, साथ सभी और एम फ्री रेडियो मनोरंजन परिवार के लिए.

जहाँ इस गीत को सुनकर आई एम श्योर बहुत से लोग जो हैं उनका मन भर आया है, माँ की याद आ गई. और हम बार बार कहते हैं जब तक माँ है ना आप छोटे हैं या बड़े, जब तक माँ है माँ तो ममता होती है, माँ तो माँ होती है. कोई माँ अच्छी नहीं होती, कोई माँ बुरी नहीं होती, माँ तो बस माँ होती है. अगर आपके पास माँ है तो बस उनका ख्याल रखिएगा, हमेशा उनका साथ दीजिएगा. और जो भी हो बस यही सोचिए कि कभी हम भी बच्चे थे, हमारे पास बहुत काफिस करते थे, माँ हमेशा हमसे प्यार से बात करती थी. मगर अब जब वो अब उस उम्र के नहीं रहे, कभी कभी वे बच्चे बन जाते हैं, उनके साथ आप रिस्पॉन्सिबल बने, आप पेशेंस रखें, क्योंकि माँ तो माँ होती है. दो सप्ताह में हम मनाएंगे मॉरिशस में मातृ दिवस, मदर्स डे. आई एम श्योर उस दिन बहुत से जो गाने हैं माँ पर बजाएंगे. तो आज के लिए आपके लिए ये गाना था. एक और गाना होगा माँ पर, आप सबों के नाम करने वाले हैं. और इससे पहले एक गाना हमने बजाया था, वो पापा जल्दी आ जाना, जो फिल्म तकदीर वाला गाना था ना, वो उसमें नाम जोड़ना हम कैसे भूलें. तो गायत्री जी की मांग पर था और वो एक चिट्ठी पर आधारित जो था ना, वो बातें कर रही थी कि कॉलेज के दिन उनको याद आ रही है, वो दोस्तों को चिट्ठी लिखना, ये सब अच्छी अच्छी यादें जुड़ी होती हैं खतों को लेकर. तो गायत्री जी आप अपने अपने अपने एक्सपीरियंस हमसे बता, थैंक यू सो मच. सो ये जो अगला गाना आपने गाना मांगा था वो तकदीर वाला, सभी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए. और वो जितने जो खत के काम, खत से उन्होंने उनका काम हुआ, दिल के रिश्ते जुड़े, उनके नाम था ये गाना. अब अगला गाना जो है फिल्म है प्यासे पंछी. इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं कटोबोन के बाबू अनटवा जी. हमेशा की तरह अपने शॉप में बैठकर हमें सुनते रहते हैं और संडे के दिन वो बस रिलैक्स करके सुनते हैं. वे कह रहे हैं कटोबोन में मौसम अच्छा है, वाओ. तो प्यासे पंछी नील गगन पर क्या करते हैं सभी फैमिली के लिए, आप सभी को कह रहे हैं हैप्पी संडे.

0: RM3 Radio. Radio.
1: सुहाना सफर, सुहाना सफर।

1:50 हुए हैं और हमारा जो प्रोग्राम है इसका सिलसिला जारी हम रखते हैं यहाँ पर सुहाना सफ़र प्रोग्राम और एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। जो गाना हमने चलाया था मुकेश साहब की आवाज़ में, ये था फॉर साजिद जी ऑफ रोजिल। और वे कह रहे हैं चिट्ठियों का जो सिलसिला है वो तब था जब भी कॉलेज के दिन थे, कॉलेज के दिनों में चिट्ठियाँ लिखते थे वो अपने दोस्तों को, कॉलेज गर्लफ्रेंड्स को, और उनसे अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। सो साथ में इट हेल्प ए लॉट व्हेन यू रोट द लेटर्स, क्योंकि ऐसे में जब इसी टाइप इसे क्वेश्चंस आते थे, आपको लिखना था निबंध ये सब, तो चिट्ठी जब लिखते थे ना तो बस ये सब वे हेल्प करते थे हमारी स्टडीज़ में भी। और प्यार का जो मामला था वो अलग ही था, मगर एटलीस्ट हमें पता था कि हर शब्द को हम तोल कर लिखते थे, तोल कर बोलते थे। तो बस ये था चिट्ठी का वो सबक का बहुत लोगों को मिला है चिट्ठियों द्वारा। और ये भी याद है ना, जब चिट्ठी मिलती थी ना तो डर जाते थे कहीं माँ बाप उनको देख न ले, कोई भाई बहन पढ़ न ले, मारपीट हो जाएगी ये सब। तो वो ज़माना क्या ज़माना था दोस्तों। और हम कह रहे थे ना कि 2 सप्ताह में हम मनाने वाले हैं वो मातृ दिवस। सो बस ये जो गाना है ये इसकी मांग की है हमारे जो अगले जो दोस्त हैं, ये गाना तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ए माँ, तो माँ की याद आ रही है आप सभी को। सो बस ये गाना चल पर आप सबों के नाम।

कनुत से है अमृता जी, ये गाना उनके मन भर आता है जब ऐसे गाने सुनती हैं। तो पति किशन की ओर से बच्चे हैं गिरीश, अंशिका, समीक्षा उनकी बहू हैं, साथ में है आयांश, इलियाना, दियाना, साथ में माया जी हैं। वे कह रही हैं आग भर आई माँ की, माँ पर गाना सुनकर, माँ की याद में ये गाना।

दुबई जब सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, इसके बाद हम 90s और 90s के ऊपर के गाने, रोमांटिक गाने, कुछ चिट्ठी पर आधारित कुछ आपके जो डेडिकेशंस हैं हम जारी रखेंगे। साथ में हमारे प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं, बस आपके नाम जुड़ते जाएंगे। हमारा साथ देते रहें आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर। लता जी चिट्ठी है

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है आस्था। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कोंगो में इबोला वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस रविवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे ऊंचा स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। चिंता की वजह एक दुर्लभ और बेहद घातक वेरिएंट है जिसके लिए फिलहाल कोई मान्यता प्राप्त वैक्सीन मौजूद नहीं है। कई संदिग्ध मौतों की भी जानकारी सामने आई है। इधर मॉरिशस में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी के कदम तेज कर दिए हैं। बंदरगाह और अड्डे पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। कोंगो से आने वाले यात्रियों को 21 दिनों तक स्वास्थ्य निगरानी में रखा जाएगा। मॉरिशस में फ्लू और अन्य स्वास्थ्य सांस संबंधी इन्फेक्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 4 से 10 मई के बीच 3,400 से ज्यादा मामले दर्ज, जबकि उससे पिछले हफ्ते करीब 3,000 मामले सामने आए थे। डॉक्टर फाजिल कोदाबुकस के अनुसार तापमान में गिरावट और मौसमी वायरसों के फैलाव के कारण आने वाले दिनों में संक्रमण और बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले फ्लू हो चुका होना दोबारा संक्रमण से पूरी सुरक्षा नहीं देता। विशेषज्ञ अच्छी जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, संतुलित भोजन लेने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दे रही है। मॉरिशस में ऑनलाइन स्कैम और साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मॉरिशस ने जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। साल की शुरुआत से अब तक ऑनलाइन फ्रॉड के 242 मामले दर्ज, इनमें से 217 आइडेंटिटी थेफ्ट और 15 फिशिंग के मामले शामिल हैं। दूर समुद्र में मछली पकड़ना अब सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मत्स्य मंत्रालय चाहता है कि स्थानीय मछुआरे लगून से आगे बढ़कर डीप सी फिशिंग की ओर कदम उठाएं। इसी दिशा में सरकार ने कई सहायता योजना शुरू की है। बैंक ऑफ मॉरिशस, डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस ने भी उसके साथ मिलकर हुए समझौते के तहत उन मछुआरों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी जिनके आउटबोर्ड इंजिन्स अब मरम्मत योग्य नहीं है। विदेश की खबरों में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की यूरोप यात्रा में व्यापार निवेश बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है। नेदरलैंड्स में उन्होंने एक बड़े डैम का दौरा किया जहां पानी के प्रबंधन और बाढ़ से बचाव के तरीकों पर चर्चा हुई। स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात वहां के नेताओं और बड़े उद्योगपतियों से होगी। बातचीत में मेक इन इंडिया, नई टेक्निक और उद्योग से जुड़े मुद्दे शामिल रहेंगे। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। लातू के निक पोटली में 76 साल के 76 years old के जनाब इसुप दहारी इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज सुबह 3 बजे उन्हीं के मकान लातू के निक पोटली से निकालकर दफनाने के लिए सैमौतें का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Center.

राजा, मुझे माफ कर दो। अभी तक जो हुआ वो सिर्फ एक नाटक था। सच तो ये है कि पहली ही नजर में तुम मेरे दिल में समा गए थे, और अब दिल तुमसे बहुत कुछ कहने के लिए बेकरार है। तुम आ रहे हो ना?

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: हो चुका है 2:11 RM Free Radio मनोरंजन के इस तीसरे आवर में आप सबों का दिल से स्वागत करते हैं। प्रेम पत्र आया है, उसने बुलाया है, आपने बुलाया, हम चले आए, हाजिर हुए हैं आप सबों का साथ देने के लिए सुहाना सफर प्रोग्राम के दौरान। मैं हूँ देविना। प्यार का मौसम है, बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, साथ में कुछ कुछ तो गर्मी भी है, बस कभी ठंडी कभी कूल कभी गर्म, यही तो ज़िंदगी है, कभी खुशी और कभी गम। गम को मारो गोली और इन गानों को आप गुनगुनाइए, अपने आप को खुश रखिए और प्यार भरा जो 90s के गाने, स्वीट स्वीट 90s के गाने हमें आपको सुनाना है 3 बजे तक। कुमार सानू साहब की आवाज़ में ये था फ्रॉम द मूवी गीत और इसमें नज़र आए थे अविनाश वधावन और साथ में द ब्यूटीफुल द लेट एक्ट्रेस दिव्या भारती। तुम्हारे प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं, सो आपके नाम जुड़ते जाएंगे। और अगला गाना जो है फिल्म है सागर, किशोरदा की मदमस्त आवाज़ में रोमांटिक सा गाना है और इसकी मांग की है लिस्परेंस रेबिशे से। बहुत दिनों के बाद मनोज सोहन से बातें हुई। मनोज जी ये वे कह रहे हैं उनके जो बच्चे हैं वे यूएस से आए थे, उनके साथ अच्छा समय बिताया, दैट्स नाइस। और जैसे कहते हैं ना, हमारा और आपका तो दिल से दिल का रिश्ता है, हमेशा जुड़ने के लिए धन्यवाद। सो मनोज जी अगला गाना जो है वाइफ एंड प्यारी सी वाइफ नजीमा के लिए, साथ में उनके सभी जो बच्चे हैं, सभी जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं और स्पेशली फॉर गया सिंह आश्रम के जो रेजिडेंट्स हैं, जो बीमार लोग हैं, जो अस्पताल में हैं, जो अकेले हैं, उन सबको याद करते हैं। और ये गाना ख़ास तौर पर हमारे सभी लिसनर्स के लिए, सागर जैसी आँखों वाली मनोज जी और नजीमा जी आपके लिए, सभी लिसनर्स के लिए।

जहां आपका फिर से वेलकम जी ऑन और इन फ्री रेडियो मनोरंजन देखते देखते दूसरा जो घंटा है खत्म हो चुका है। तीसरे घंटे में हमने कदम रखा तो देखो 20 मिनट चले गई और 3 बजे तक हमारा और आपका साथ है। कुछ कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ कुछ जो फरमाइशें हैं और कुछ हमारे ही अपने जो हैं अपना जो पसंदीदा गाना हमने रखा है यहाँ पर, तो देखेंगे कब तक ये गाने चलेंगे। तो यहाँ पर है जाने जा जाने जा उदित नारायण साहब की आवाज़ में और ये है फ्रॉम द मूवी अनारी। और इस गीत की मांग किया है, इसमें नाम जोड़ते हैं माइक गुरापा और वे ये गाना पसंद करते हैं, कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं UNI मेलोडीज़ के सभी फैंस के लिए। साथ में किशन है और मोटूको के जितने उनके दोस्त हैं, ये रहा आपके लिए।

माशू फिल्म से लिया गया एक बहुत खूबसूरत गाना है, रोमांटिक सा गाना है। इस संडे आफ्टरनून में आप सबों के लिए ये सौगात है और ये आया है मोदालबिया की मालिनी जी की ओर से और सभी सुनने वालों के लिए, पति इंद्रजीत, बेटी छाया के लिए, साथ मैरिवेज पुस्त के वीना जी के लिए।

जहाँ जेठा मॉडल बेया की अनीता जी की ओर से, और वे कहती हैं हर दिया आपकी दहलीज पर चले, हर दिया आपकी दहलीज पर चले, हर फूल आपके आंगन में खिले, आप सफ़र सफल हो कितना सुंदर, आपका ये सफ़र हो कितना सुंदर, हर खुशी आपके साथ चले। थैंक यू सो मच मोटालबिया की अनीता जी, साथ में करुणा जी के लिए, अमृता, सभी दोस्तों के लिए फिल्म थी उफ ये मोहब्बत, कुमार सानू साहब, साथ में अलका याग्निक, जब से है सीखा दिल ने धड़कना। एक मैसेज की ओर बढ़ते हैं। नाइस संडे ब्लेसिंग टू यू, सेम टू यू प्रकाश बती जी, नाइस टू हियर अबाउट मदर, ओको हो हाँ जी, मुझे बहुत अच्छी लगी, माँ के लिए, माँ तो माँ ही होती हैं, उसी जगह कोई नहीं ले सकता। ऑफ कोर्स एक माँ चुपचाप दर्द छुपाती हैं, और जो आंसू वो सबसे छुपाती हैं, वो अक्सर तब गिरती हैं जब कोई नहीं देखता। हाँ जी, आप शायद कर भी बातें भूल जाएं, लेकिन एक माँ उन्हें चुपचाप याद रखती हैं, याद रखे कि किसके दिल ने सबसे पहले प्यार किया था, तो माँ का कदर करो। हाँ जी बिल्कुल प्रकाशवती जी, माँ का कदर हर किसी को करनी चाहिए, आप छोटे हो या बड़े हो, माँ तो माँ होती हैं, माँ ही नहीं मगर पापा भी एक साथ मिलकर बच्चों को संभालते हैं। कभी कभी पापा अकेले पर जाते हैं, कभी कभी मम्मी जो हैं अकेली पर जाती हैं, मगर जो भी हो हमेशा अपने पेरेंट्स का कदर करो। बस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, और आशिकी में तो हर कोई आशिक बन जाता है, खुशी मिलती है, गम भी मिलते हैं, और जब भी जुदाई आती है तो बस दिल से यही गाना निकलता है, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी आशिकी है। और ये गाना जो है अनुराधा पौडवाल जी की मधुर आवाज़ में, साथ में कुमार सानू साहब, फिल्म आशिकी से लिया गया, ये गाना कौन भूल सकता है। और ये गाना खास तौर पर बुबासे के हरीश बाबू के लिए, उनके खास दोस्त के लिए, साथ में सभी हमारे जो लिसनर्स हैं उनके नाम।

0: RM3 Radio. Radio.
1: दो बजकर 54 मिनट हुए हैं और वो दौर याद है जब रेडियो के सामने पूरा परिवार बैठा करता था, जब एक गीत सुनने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार करती थी, जब प्यार चिट्ठियों में होता

था, गानों में होता था और एहसास गीतों में, वही सुनहरा दौर आज फिर लौट आया है आपके अपने कार्यक्रम सुहाना सफर में। 3 बजे तक हम और आप साथ रहने वाले हैं। बस ये गाना, जो अगला गाना जो है रेहाना जी की मांग पर, मला फाउडर, सुरेखा, राजा बुडू, फजला बिगन के लिए, हेलो गर्ल्स। ये गाना किशोर कुमार की आवाज़, नहीं, कुमार सानू जी की आवाज़ में, स्वीट 90s है।

जहाँ 2:50 होने वाला है और जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे, हर दिन अच्छा नहीं हो सकता लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर हो सकता है। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और ज़िंदगी को गीतों की तरह गुनगुनाते रहिए।

वैसे आपके साथ ये खूबसूरत दोपहर बिताकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि सुहाना सफर के इन 3 घंटों ने आपके दिल को खुशी, चेहरे को मुस्कान और यादों को नई चमक दी होगी। और विदा लेने का समय तो आ ही चुका है। 3 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार, इसके बाद होगा ऐसा भी होता है प्रोग्राम। आपकी जिंदगी हमेशा संगीत की तरह मधुर रहे और हर सफर सुहाना बने। वैसे सफर की बात की तो सफर में है अभी ऑन द वे अमित है, मीरा और साथ में भावना है, वे जा रहे हैं कहीं। तो हैव ए सेफ ट्रिप गाइज, एंड जितने लोग सफर में हैं अभी टेक केयर, धीमे धीमे आप चलिए। अगर कैसे कहेंगे, अगर रुक भी जाए तो कोई बात नहीं, मंजिल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो बी सेफ, बी हैप्पी। और इस अगले गाने में जोड़ते हैं मीरा के लिए, भावना के लिए, साथ में अमित के लिए ये अगला गाना। और ऑल्सो रिवे जो पो की माला जी, उन्होंने कहा इस गाने में ना अपना हमारा नाम जोड़ दीजिए। ऑफकोर्स फॉर माला जी, कनील, कबीर, कनिष्क, किरण, केविन, शिव और साथ में है सत्यम। और जितने लोगों ने हमारा साथ दिया, हमसे बातें की, हमें मैसेजेस भेजे, थैंक यू दिल से, हमेशा हमारा साथ देते रहे। आर एम फ्री रेडियो मनोरंजन पर आपका फुल ऑन मनोरंजन होता रहेगा। सो बस जैसे हमने कहा, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह। सो बस ये जो आने वाला जो वीक है, एक नई सुबह लेकर आए, नई उमंग, नई एनर्जी और नए गीतों को आप गुनगुनाते रहें। और अगर कोई दिल है, दिल में कोई गीत है तो बस उनका रिक्वेस्ट आप भेजें हमें। कितने सारे कार्यक्रम्स हैं यहाँ पर आप सुन पाएंगे। सो बस आपको भेजते हैं ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, बाय बाय।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें आस्था से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, सुबह 3 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कोंगो में एबोला वायरस का खतरा एक बार फिर बढ़ गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रविवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे ऊंचा स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। चिंता की वजह एक दुर्लभ और बेहद घातक वेरिएंट है, जिसके लिए फिलहाल कोई मान्यता प्राप्त वैक्सीन मौजूद नहीं है। कई संदिग्ध मौतों की भी जानकारी सामने आई है। इधर मॉरिशस में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी कदम तेज कर दिए हैं। बंदरगाह और हवाई अड्डे पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। कोंगो से आने वाली यात्रियों को 21 दिनों तक स्वास्थ्य निगरानी में रखा जाएगा। मॉरिशस में फ्लू और अन्य सांस संबंधी इंफेक्शन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 4 से 10 मई के बीच 3,400 से ज्यादा मामले दर्ज, जबकि उससे पिछले हफ्ते के दौरान करीब 3,000 मामले सामने आई थी। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में गिरावट और मौसमी वायरसों के फैलाव के कारण आने वाले दिनों में संक्रमण और बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले फ्लू हो चुका होना दोबारा संक्रमण से पूरी सुरक्षा नहीं देता। विशेषज्ञ अच्छी जीवन शैली अपनाने, संतुलित भोजन लेने और पर्याप्त आराम करने की सलाह दे रहे हैं। मॉरिशस में ऑनलाइन स्कैम और साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम मॉरिशस ने जनता को सतर्क रहने की चेतावनी दी। साल की शुरुआत से अब तक ऑनलाइन फ्रॉड के 242 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 217 पहचान चोरी और 15 फिशिंग के मामले शामिल हैं। सर्ट एमयू के अनुसार साइबर अपराधी अब एआई का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। दूर समुद्र में मछली पकड़ना अब सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल। मत्स्य मंत्रालय चाहता है कि स्थानीय मछुआरे लगून से आगे बढ़कर डीप सी फिशिंग की ओर बढ़ें। इस दिशा में सरकार ने कई सहायता योजना शुरू की है। डेवलपमेंट बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ हुए समझौते के तहत उन मछुआरों को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी जिनके आउटबोर्ड इंजन्स की मरम्मत योग्य नहीं है। वाकुआ की जॉन केनेडी सड़क पर पिछले फरवरी महीने से आवागमन प्रभावित, नदी पर बने पुल के निर्माण कार्य के कारण सड़क की दोनों लेन बंद कर दी गई हैं। व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और कर्मचारियों का कहना है कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित है। लंबे रास्ते, आर्थिक नुकसान और लगातार बढ़ती परेशानी के बीच कई लोग अपनी निराश नजर आ रहे हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूरोप यात्रा, उनकी यात्रा में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर खास जोर दिया जा रहा है। नेदरलैंड्स में उन्होंने एक बड़े डैम का दौरा किया, जहां पानी के प्रबंधन और बाढ़ से बचाव के तरीकों पर चर्चा हुई। स्वीडन में श्री मोदी की मुलाकात वहां के नेताओं और बड़े उद्योगपतियों से होगी। बातचीत में मेक इन इंडिया, नई टेक्निक और उद्योग से जुड़े मुद्दे शामिल। वहीं नॉर्वे में भी निवेश और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यूरोपीय देशों ने भारत को विकास और कारोबार के लिए एक अहम साझेदार बताया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। सुफ्रेन स्ट्रीट मेबर्ग में 94 साल के 94 साल के अब्दुल मुनाफ मामूजी इंतकाल कर गए हैं। लोग उन्हें चिबाई के नाम से अधिक जानते थे। उनका जनाजा आज शाम के 6 बजे उन्हें मकान से उठाकर दफनाने के लिए रिविया द क्रियोल का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 6 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

0: continuous music. RM3.
1: ऐसा भी होता है on RM3.
2: इंसान क्या से क्या हो गया है, वो सोचता कुछ और है, करता कुछ और है, और वो खुद नहीं जानता कि उसके दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है। हर क्षण हर पल इंसान का मन बदलता रहता है, बड़ा ही चंचल है ये इंसान। कौन इसे समझा है जो आज कोई इसे समझेगा, कोई नहीं जान सकता इंसान के मन में क्या है, इंसान के इरादे क्या है। प्रस्तुत है अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है। और जय प्रताप सिंह सितालू के साथ स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड गर्ल्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून मॉरिशस। शाम के 3:05 हो रहे हैं और इम्प्री रेडियो मनोरंजन 94.6 98.2 MHz। जितने भी लोग हमें इंटरनेट पर सुन रहे हैं, मीडिया सोशल मीडिया पर हमें फॉलो कर रहे हैं, टिकटॉक पेज पर भी, सो आपका स्वागत है। और आज इस प्रोग्राम में हम लाए अद्भुत सनसनी खबरें, अनबिलीवेबल बच्चू, और आज हमारे गेस्ट हैं। हम थोड़ी देर में अपने मेहमान से आपको मिलवाएंगे और वो इस प्रोग्राम में भाग लेंगे, अपने विचार देंगे अद्भुत सनसनी खबरों के बारे में। सो गाइज, संडे की मस्तानी शाम, आई नो ठंड का मौसम है और ठंड तो लग रही है, और एक हो जाए गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी, उसके साथ साथ ये प्यारा सा गाना, यस, हनी सिंह की आवाज़, फिल्म का नाम है द शौकीन्स, हियर वी गो।

बड़ी ही अजीब है ये दुनिया और बड़े ही अजीब है यहाँ पर रहने वाले लोग। ये तो आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में जब सुबह

तो हम लोग नींद से जागते थे, ना मोबाइल था ना घड़ी थी, पर क्या एक मुर्गा के बांकने से पुलिस केस हो सकता है? जी हाँ, पुलिस केस हुआ है। और ये केस हुआ है फ्रांस के एक इलाके में, सोन ए लुआ नामक इलाका में। एक कपल ने अपने पड़ोसी का कंप्लेन किया है पुलिस में जाकर कि उसका मुर्गा जो है बहुत ज़ोर से बांकता है और इन लोगों की नींद ख़राब हो जाती है। अब ये केस कोर्ट तक पहुंचा है और

0: दिए। अब ये केस कोर्ट तक पहुंचा है और दिखाई दीजिए।
1: मेरा नाम नटराज राम करण है और मैं नोवेल फ्रांस से हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, अपर सिक्स में,
0: हाँ,
1: सेंट बेसेस जाता हूँ।
0: ओके जी। और नटराज जी, आप इस, अभी हमने एक न्यूज दिया कि बहुत विचित्र सा न्यूज है, अचरज कर दिया कि एक पड़ोसी का मुर्गा बांक रहा है और पड़ोसी ने जाकर पुलिस में केस कर दिया। आप क्या सोचे इसके बारे में?
1: हाँ जी प्रताप जी, सबसे पहले देखिए, जहाँ तक इस मामले को का प्रश्न है, ये एक कानूनी मामला है क्योंकि इसकी शिकायत दर्ज की जा चुकी है। इस विषय में जो भी उचित सही निर्णय है वो केवल संबंधित विभाग, प्रशासन और कोर्ट ही ले सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ इसके निष्कर्ष या फैसले की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन ये जानवर है, जानवर ही तो शोर करेगा, जो जानवर नहीं करेगा तो कौन करेगा।
0: जाहिर सी बात है। क्या आपने कभी सुना है कि सुबह के वक्त मुर्गा भौंक रहा है तो आपकी नींद टूटती है?
1: हाँ, पहले मेरे घर पर मुर्गे थे।
0: हाँ, अभी आजकल नहीं देखने को मिलता है। है आपके यहाँ? नहीं, आपके घर के आसपास
1: नहीं है।
0: सो पहले का ज़माना कुछ और था, पर आज भी मॉरिशस में भी अगर आप देखेंगे, कई सी जगह, गरीबिया चुपस से कैसी जगह, लाफलोहा कैसी जगह, जहाँ पर मैंने देखा है कि व्यक्ति, उसके आंगन में इतनी मुर्गियाँ हैं, इतने मुर्गे और इतने चूजे हैं कि क्या बताएं। सो नटराज जी, अचरज तो लगा आपको ये न्यूज़ सुनकर कि एक मुर्गे के बांकने के कारण लोग जाकर पुलिस केस कर रहे हैं, है ना?
1: हाँ जी,
0: हाँ जी। तो बातचीत चलती रहेगी दोस्तों, दुनिया में ऐसा भी होता है, अगर आपके घर के पास भी किसी का मुर्गा है, वो अगर वो सुबह भौंकता है तो इसका मतलब है कि आपको नींद से जागना है, पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, ठीक है? और ऐसे में चलिए हम बढ़ेंगे हमारे अगले गीत की ओर। यस, बहुत ही प्यारा सा ज़बरदस्त गीत है, फिल्म अक्सर से लिया गया, एंड इट विल बी इन द स्वीट वॉइसेस ऑफ जयेश गांधी, जयेश गांधी माफ कीजिए, कुनल गंजवाला, लुट जाएंगे। वंडरफुल आफ्टरनून विद यू, अजय प्रताप सिंह के साथ शाम के 4 बजे तक ऑन एम फ्री रेडियो, मनोरंजन पर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है।

0: ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है लाइव एमबीसी मोका से शाम के 3:19 और 12 सेकेंड्स से। वेलकम फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपने चुन किया है तो यस, अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम ऐसा भी होता है जो चलता है हर संडे की शाम ऑन एमबीसी रेडियो मनोरंजन। अब बढ़ते अगली न्यूज की ओर। एक व्यक्ति ने, इंडोनेशिया में एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी क्योंकि वह दूसरा व्यक्ति उसे ताना दे रहा था कि तुम्हारी शादी कब होगी, तुम्हारी शादी कब होगी। उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर उस व्यक्ति को जान से मार डाला। कैसे लोग हैं इस दुनिया में। 45 वर्षीय पर्लिंग डुंगी रेगर नाम है उस व्यक्ति का। उसने मारा अपने पड़ोसी असगिम इरियांटो को, और असगिम इरियांटो जो है अपने पड़ोसी को परेशान करता था कि तेरी शादी कब होगी, तेरी शादी कब होगी। इस बात को सुनते सुनते सुनते एक दिन पर्लिंग डुंगी रेगर ने उसे जान से मार डाला। देखिए दोस्तों, शादी करना या नहीं करना ये एक पर्सनल चॉइस है। ओके, हम किसी को, किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते शादी करने के लिए। अगर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी किसी के साथ बांटने के लिए सो कर सकता है, अदरवाइज वी आर फ्री। हमारा अपना जीवन है और वी हैव टू डिसाइड। पर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति शादी नहीं कर रहा है तो अगर हम उन्हें ताना देंगे ये भी अच्छी बात नहीं है। लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, कहते हैं ना। और लोग तो कहते रहेंगे, अच्छा काम भी करते हैं लोग बात करेंगे, बुरा काम भी करेंगे लोग बात करेंगे। लोगों का काम है कहना, नतरा जिस पर आप क्या कहेंगे। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी क्योंकि वो उसे ताना दे रहा था कि तेरी शादी नहीं हो रही है।
1: हाँ जी, मेरे विचार में इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जैसे वक्त कविदास ने कहा, आवत गाड़ी एक है, उलटत होत अनेक। कह कबीर, वक्त

0: नहीं उलत वही एक ही। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को गाली या कदु वचन नहीं देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं तो वह व्यक्ति हमें और भी ज़्यादा गाली देगा और गालियों देने का यह चक्र बहुत समय तक इसी तरह चलता रहेगा। सिख, जो सिख हमें मिलते हैं तो हमें इस दोहे से यह सीखने को मिलता है कि चाहे किसी भी परिस्थिति हो, कभी भी अपना संयम न कोड और जितना हो सके झगड़े से बचकर रहे। और जैसे आपने कहा है, ये एक पर्सनल मैटर है, तो दूसरे को इस पर कोई
1: मतलब किसी को किसी पर ताना नहीं देना चाहिए कि अगर शादी हुई, कुछ लोग ऐसे हैं भाई जी, अगर शादी हुई तो पूछते हैं शादी हुई तो बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हो रहा है तब क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, अब बच्चा हो गया तो पूछते हैं कि बच्चे की शादी कब होगी। सो लगता है लोगों को अपना प्रॉब्लम ही दूसरों का प्रॉब्लम अच्छा लगता है। और आप शादी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: शादी के बारे में ये एक प्रश्न है, मतलब मेरे
1: आपके विचार से,
0: मेरे विचार से मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ।
1: ओके।
0: क्योंकि मैंने बहुत ही परिस्थितियाँ देखी है जो शादी,
1: मतलब बहुत से ऐसी परिस्थितियाँ जहाँ पर शादी होती है, शादी टूट जाती है, लोग एक दूसरे के साथ वादे करते हैं पर वादे निभाते नहीं है। और आजकल की दुनिया में एक अच्छा लड़का या अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल है।
0: हाँ, और मैंने ऐसा भी देखा है जो एक व्यक्ति शादी से पहले बहुत खुश था, बहुत आराम से जी रहे था, लेकिन शादी के बाद उसके जिंदगी
1: कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पचता है, जो ना भी खाए वो भी पचता है। सो वी रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ दोस्तों, तो इस वक्त अभी हमारे दोस्त, हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, नटराज राम कोरन जी नोबेल फोंसे, उन्होंने सही कहा कि इट्स ए मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, हम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिन शादी के खुश है, कुछ लोग शादी के बाद भी खुश होते हैं, पर किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाती शादी करने के बारे में। सो अगर आप YouTube पर जाएंगे सो टाइप कीजिए पर लिंग डूंगी रेगर, PARLINDUNGI लीव स्पेस रेगर और AGR। सो जिसे आप टाइप करेंगे सो आपको मिलेगा पूरा न्यूज़ कैसे उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी का खून कर दिया गुस्से में आकर, क्योंकि उसका पड़ोसी बार बार उससे पूछ रहा था, ऐ तुम शादी कब करोगे, कब करोगे। सो वो व्यक्ति इतना गुस्सा में आया कि उसने उसे जान से मार डाला, पर उसे क्या मिला, अब वो जेल के सलाखों के पीछे है। सो कभी कभी गुस्सा में लिया हुआ डिसीजन बहुत खतरनाक होता है, इसीलिए अगर आपका मन जो है गुस्से में है, आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कृपया उस समय कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ निर्णय जानलेवा हो सकता है। चलिए बढ़ते अगले गीत की ओर। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गाना बप्पी जाय और अलका याग्निक की आवाज़ों में गोलाई गोलाई गो, फिल्म का नाम है, इसी का नाम जिंदगी।

0: RM3 Radio.
1: रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, 24 घंटे सातों दिन सुनते रहिए RM3 MBC रेडियो मनोरंजन। और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू जी हमारा साथ देने के लिए ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, टिकटॉक, और बहुत से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हमें इस प्रोग्राम को पसंद करें। यस, ऐसा भी होता है और अद्भुत सनसनी खबरों का प्रोग्राम है। और आज हमारे गेस्ट है श्री नटराज रामकोरन जी, जो न्यूवे फ्रांस से आए हुए हैं और हमसे बातचीत कर रहे हैं। चलिए अगले न्यूज़ की ओर बढ़ेंगे। और अगला न्यूज़ ये है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी नदी, जी हाँ, द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ रिवर नाइल। ये सबसे लंबी और प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और कई देशों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर की है। बाप रे बाप, इतनी लंबी गहरी नदी। नील नदी का उद्गम नील नदी के मुख्य नदियों से मिलकर बनती है। व्हाइट नाइल इसका स्रोत लेक विक्टोरिया में माना जाता है। ब्लू नाइल इसका स्रोत लेक ताना में है। और ये दोनों नदियां खार्तूम में मिलती है और फिर आगे जाकर नील नदी कहलाती है। और नील नदी कई देशों से होकर जाती है, जैसे कि युगांडा, सूडान, इजिप्ट, इथियोपिया आदि आदि। इजिप्ट के नील नदी का उभार कहा जाता है क्योंकि खेती के लिए पानी मिलता है, पीने का पानी उपलब्ध होता है, व्यापार और यातायात में सहायता मिलती है। प्राचीन सभ्यता का विकास नील नदी के किनारे हुआ। ऐतिहासिक महत्व नदी का। प्राचीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। पिरामिड, मंदिर और कई ऐतिहासिक नगर इस नदी के आसपास बने। नदी की बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाती है और जिससे खेती अच्छी होती है। रोचक तथ्य इस नदी को लेकर, नील नदी भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। ओ माय गॉड, इसे दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। हालांकि कुछ लोग अमेजोन रिवर को सबसे लंबी नदी कहते हैं, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में रिवर नाइल का नाम आता है। नाइल नदी में मगरमच्छ और कई प्रकार की मछलियां पाई जाती है। क्या बात है। और रिवर नाइल नदी इतनी बड़ी है कि यहाँ पर आप बोट में जाकर सफ़र कर सकते हैं। बहुत विशाल है। और नटराज जी, आप जैसे कि अभी आपने सुना कि यह नदी इतनी बड़ी नदी है, सो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या दुनिया में ऐसा हो सकता है?
2: हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यह एक अनोखी नदी है क्योंकि यह दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है।
1: और आपको मौका मिला है कभी इस नदी को देखने के लिए लाइव, या इसे यूट्यूब पर देखते हैं?
2: नहीं, ऐसे यूट्यूब पर देखते हैं।
1: और ऐसे नदी के बारे में जब आप सोचते हैं कि इसमें कई बोट डाल सकते हैं, लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, तो कैसा लगता है? अचरज लगता है ना?
2: हाँ, रोचक की बात है।
1: और मॉरिशस में भी कुछ नदियाँ हैं, जैसे ग्रैंड रिवर साउथ, या फिर दूसरा बड़ा नदी है रिवियर जुपोस्ट, है कि नहीं? पर नाइल नदी जैसा तो मुश्किल है क्योंकि दुनिया में ये एक ही ऐसी नदी है जो इतना बड़ा और विशाल है। तो एक दिन क्या, अगर आपको मौका मिलेगा वहाँ पर जाने के, तो आप जाएंगे?
2: हाँ बिल्कुल।
1: हाँ, और
2: इस अनोखी नदी को जानना चाहता हूँ, लाइव देखना चाहता हूँ।
1: हाँ, ये तो है। और बेशक दुनिया में बहुत ऐसी अचरज चीज़ें, भगवान ने जब संसार को रचा तो उसने बहुत कुछ बनाया, आसमान बनाया, तो

0: जमीन भी बनाई, लोगों को बनाया तो जानवर भी बनाया, फिर जानवरों के साथ प्रकृति का जो जो स्रोत है प्रभु ने उससे भी रचा। और जब हम नदी की बात करते हैं तो नदियाँ अक्सर जाकर सागर में मिलती हैं कि नहीं, और नदी का पानी का टेस्ट कुछ और है और सागर का पानी, पर नदी जब जाकर सागर में मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए, है कि नहीं।
1: हाँ,
0: बिल्कुल। सो दोस्तों आप टाइप कीजिए नाइल रिवर यूट्यूब पर, आप देख पाएंगे कितना विशाल, कितना गहरा, कितना कितना विशाल नदी है ये, और दुनिया भर से पर्यटक लोग वहाँ पर जाते हैं। आज लोग आजकल भी लोग रिसर्च कर रहे हैं इस नदी के बारे में, और जैसे हमने कहा कि इस नदी में मगरमच्छ भी हैं जिसे हम क्रोकोडाइल कहते हैं, मछलियाँ भी हैं और बहुत सारी जीव जंतु है। सो अगर मौका मिलेगा एक दिन आपको तो जाइएगा ज़रूर, रिवर नाइल का भ्रमण कीजिएगा। अभी के लिए सुनते हैं ये प्यारा सगाना, इश्क सोना है।

0: इश्क सोना है इश्क चांदी है क्या बात है। और बेशक शाम के 3:40 हो रहे, ऐसा भी होता है कार्यक्रम शाम के 4 तक। उधर से डॉक्टर पूनम इशारा कर रही है कि उसका शो आने वाला है 4 के बाद, फिल्मी गजलें। ठीक है, उनका साथ दीजिएगा 4:05 से 5 तक डॉक्टर पूनम जी के साथ। यस जी हाँ, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार अगर आए तो लुप्त हो जाती है, उन्हीं चीज़ों में से एक है डोडो। अब ये डोडो क्या है? ये डोडो उस पक्षी का नाम है जो केवल मॉरिशस में था। जहाँ बहुत साल पहले की बात है, मॉरिशस का नाम था इल दे फ्रांस। जो फ्रेंच लोग यहाँ पर आए थे, माहिदुल अबूद ने, पियर पुआवी सब आए थे यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, कॉलोनाइज करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक पक्षी है, खूब मोटा टगरा था, छोटे छोटे पंख वाले थे, और जो है डोडो जो है बहुत ही भारी जानवर था और उड़ नहीं सकता था। और उसकी ऊंचाई लगभग 1 तक होती थी, वज़न लगभग 10 से 18 किलोग्राम तक हो सकता था, और उसकी चोंच बड़ी और मुड़ी हुई थी, पंख छोटे थे इसलिए वह उड़ नहीं पाता था। ए ता हमारा प्यारा डोडो। और पैर मजबूत थे जिससे वह तेज़ी से चल सकता था, पर बेचारा उड़ नहीं सकता था। डोडो केवल मॉरिशस के जंगलों में पाया जाता था, वहाँ उसके कोई शिकारी नहीं था, इसलिए उसने उड़ने का आवश्यकता उसे उड़ने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। डोडो फल, बीज, जड़ें और छोटे जीव खाता था। इंटरेस्टिंग, माना जाता है कि यह ज़मीन पर गिरे फलों को अधिक खाता था। ए ता हमारा बेचारा डोडो। विलुप्त कैसे हुआ? 17वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक मॉरिशस पहुंचे, उसके साथ कुत्ते, सुअर और चूहे जैसे जानवर भी आए। इन जानवरों ने डोडो के अंडों और बच्चों को नुकसान पहुंचाया। ओ लाला। इसके अलावा अत्यधिक शिकार हुआ, जंगलों की कटाई हुई, प्रजनन धीमा था। इन कारणों में लगभग 1681 तक डोडो पूरी तरह विलुप्त हो गया। डच और पोर्चुगीज लोगों ने सब डोडो को खा लिया। हाय रे डोडो, सचमुच डोडो कर गया। आज डोडो पक्षी हमें यह सिखाते हैं कि यदि प्रकृति और जीवों की रक्षा न की जाए तो वे हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इसे संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। रोचक तत्व, डेड एज ए डोडो अंग्रेजी में पूरी तरह समाप्त हो जाने के लिए कहा जाता है। अंग्रेजी कहावत है टू बी डेड एज ए डोडो। डोडो मॉरिशस का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। आज भी बहुत से ऐसे नोट्स है, बैंक नोट्स है, जहाँ पर आप डोडो पक्षी को देख सकते हैं। कितना प्यारा डोडो पक्षी था बेचारा। इसके वास्तविक जीवित चित्र बहुत कम उपलब्ध है क्योंकि यह बहुत पहले विलुप्त हो चुका था। सो सोचिए दोस्तों, अगर आज मॉरिशस में डोडो होता तो सभी लोग डोडो को देखने जाते। और हमारे दोस्त, आप क्या कहेंगे डोडो के बारे में?
1: हाँ जी, डोडो पक्षी केवल मॉरिशस में ही, यानी इल दे फ्रांस
0: में पाया जाता था।
1: इसलिए विकसित हुआ क्योंकि यह द्वीप लाखों सालों तक

0: दुनिया से पूरी तरह अलग तरह किया। वहाँ इस पक्षी को मारने वाला कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था। खाने के कोई कमी नहीं थी, इसीलिए सुरक्षा और आराम के माहौल में रहते हुए दुदु ने उड़ने की क्षमता को दी और वह केवल इसी द्रव्य को मूल निवासी बनकर रह गया। दुदु ने उनको खा लिया। डच लोगों ने दुदु को खा लिया।
1: बेचारा दुदु उड़ नहीं पाया था। सो नटराज जी, अगर आज अगर मान लीजिए अभी जहाँ हम जी रहे 2026 में, अगर आपके घर आंगन में एक दो डोडो टहलते तो आप क्या करते?
0: हाँ, बहुत ही रोचक की बात है। मैं जानवर से बहुत प्यार करता हूँ और एक डोडो, एक एंडेमिक बर्ड मेरे घर पर था तो मैं बहुत ही खुशी हुआ।
1: नहीं, अगर डोडो आपके आंगन में आता तो क्या आप उसे पालते या उसे बेच देते या उसे खा जाते, क्या करते?
0: मैं उसे पालन करता हूँ।
1: हाँ, और डोडो जो है अंडे देते थे और जब समय आता था तो अंडों में से डोडो निकलते थे। शायद हम मॉरिशस वासी गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम एक ऐसा देश में रहते हैं जहाँ पर डोडो था, पर आज डोडो नहीं है। दुख की बात है, पर क्या करें, उस जमाने में डच वालों ने सभी डोडो को खा लिया। शायद और भी आजकल रिसर्च हो रहा है, केवल डोडो नहीं, मॉरिशस के जंगलों में बहुत से ऐसे प्राणी थे, बहुत से ऐसे क्रिएचर्स थे जो लुप्त हो गए हैं, एक्सटिंक बर्ड, जिसे पराकित ये सब हम बोलते हैं, है कि नहीं? हाँ जी। तो चलिए अभी के लिए गीत हो जाए, गीत के बाद इस बातचीत को हम जारी रखेंगे। दुनिया में ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। लाइव MBC रेडियो मनोरंजन पर शाम के 4 बजे तक।

0: RM3 Radio. Radio.
1: जन्म और मरण ये दोनों इंसान के बस में नहीं। जब भगवान ने इंसान को संसार में भेजता है तो उसी समय निश्चित हो जाता है कि उसकी मृत्यु कब होनी है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति संसार में आता है उसे संसार को छोड़कर जाना पड़ता है और यमदूत जी महाराज वो ऑन टाइम होते हैं। जब भी किसी का समय आता है जाने के लिए, आप चाहे कितने भी बहाने क्यों न बनाने पर जाना पड़ता है। इंसान धन कमाता है, धन के पीछे भागता है, मोह माया के संसार में इधर भागता है उधर भागता है, अंत समय में सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि जीवन का कटु सत्य है मौत, मृत्यु। और ये सबसे बड़ा भय बना हुआ है। सदियों से लोग मृत्यु के बारे में लिखते आ रहे हैं, आज भी लिखते हैं, कल भी लिखते रहेंगे, पर मौत एक रहस्य है, कोई नहीं जानता है कि ये कब आएगा। और कहते हैं कि जब इंसान ने जन्म लिया था तो किसी व्यक्ति ने उसे नहाया था और अंत समय में जब संसार को छोड़कर जाएगा, जब प्राण शरीर से निकलेगा, आत्मा शरीर से निकलेगी, तो कोई व्यक्ति उसे नहाएगा और वह व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला जाएगा। हाँ, उसके परिवार शमशान भूमि तक जाएंगे, उसके बाद इस सफ़र को अकेले तय करना है। नटराज जी, आप मौत के बारे में क्या सोचते हैं?
2: हाँ जी, तकलीफ तो जिंदगी देती है, मौत तो यूं ही एक बहाना है। जैसे हम पैदा होते हैं वैसे ही एक दिन मरना भी है।
1: यह मतलब मरना स्वाभाविक है, नेचुरल है।
2: हाँ, इट्स नेचुरल। यह सामान्य है, धरती का नियम है, कुछ भी सत्याती नहीं हो।
1: और मौत के बारे में तो वैसे हमने देखे हैं, कुछ लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, कुछ लोग बीमारी से मरते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति हंसते हंसते मर रहा है? आपने कभी सुना है?
2: हाँ,
1: ऐसा भी होता है कि किसी को लॉटरी लग गई और वो अपना लॉटरी का टिकट देख रहा है, इतना ज़ोर से वो हंसा कि दिल की धड़कन बंद हो जाती है। तो दोस्तों, जी हाँ, जैसे कि हमने कहा कि मौत के बारे में हम कितनी भी

0: बातें क्यों ना कहें, परंतु मौत को जानना बहुत मुश्किल है। वही व्यक्ति जानता है जो मरता है कि उसके साथ क्या होता है। थानेदार फिल्म का गाना है और इसी के साथ ही ऐसा भी होता है कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। नटराज रामकरण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आप यहाँ पर आए, आपने अपने विचार
1: शानदार शो पे बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: कैसा लगा आपको प्रोग्राम में भाग लेते हुए?
1: बहुत ही रोचक था और आशा करता हूँ कि दूसरी बार भी
0: आपको मौका देंगे जरूर। और जीवन में आप क्या करना चाहेंगे पढ़ाई के बाद?
1: पढ़ाई के बाद मैं अपना कुछ व्यापार करना चाहता हूँ।
0: ओके, एक बिजनेस। और आपने कहा था कि आपको समाचार पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
1: हाँ,
0: तो शायद एक दिन आप मेरी जगह में होंगे, समाचार पढ़ेंगे यहाँ पर। ऑल द बेस्ट और गुड लक कहेंगे आपको, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सो नटराज रामकरण जी नोबेल फोन से आए थे प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, शुक्रिया। ओके, सो दोस्तों ठीक 4 बजे होगा फ्लैश न्यूज़ के बाद डॉक्टर पूनम से आप मिलेंगे, आप सुनेंगे उनसे फिल्मी नगमे प्रोग्राम। हमारी आपकी मुलाकात होगी बुधवार की रात को 9 बजे से 12 बजे तक ऑन ऑरएम फ्री रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। तक हमें दीजिए इजाज़त। और जय प्रताप सिंह सीतालू की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।

0: सेंटर 95 नॉर्थ साउथ
1: 4 बज रहे हैं। सुनते समाचार आशा जी के साथ नमस्कार।
2: नमस्कार, 4 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। फ्लैग केसर अनिरुद्ध जगनाथ अस्पताल के बाद अब पोटली के जीतू अस्पताल में भी एक नई ट्रॉमा एंड इमरजेंसी यूनिट शुरू की गई है। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्छू और चुनाव क्षेत्र के सांसदों की उपस्थिति में किया गया। इस नई इकाई का उद्देश्य गंभीर रूप से घायल और आपात स्थिति वाले मरीजों को तेज और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिच्छू ने कहा कि जल्द ही अन्य इलाकाई अस्पतालों में भी ऐसी ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट शुरू की जाएगी। दुनिया भर में आज समलैंगिकता के खिलाफ भेदभाव और घृणा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस ऐतिहासिक फैसले की याद दिलाता है जब 17 मई 1990 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने होमोसेक्सुअलिटी

0: को मानसिक बीमारियों की सूची से हटा दिया था, जिसे मानव अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। हालांकि कानूनों और अधिकारों में प्रगति के बावजूद जमीनी स्तर पर भेदभाव और अस्वीकार की भावना अब भी कायम है। फ्रेंच भाषा का स्तर अब अभिभावकों और अध्यापकों दोनों के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। स्कूल सर्टिफिकेट के हालिया परिणामों में आधे से भी कम विद्यार्थियों ने फ्रेंच में डिस्टिंक्शन या क्रेडिट हासिल किया है और 13,000 छात्रों में से केवल 3% छात्रों को ही ग्रेड 1 मिला। शिक्षकों के अनुसार इस गिरते स्तर की एक बड़ी वजह बच्चों का ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताना और पढ़ने की आदत में कमी आना है। गोपो के लाउन माउंटेन में दक्षिण पूर्वी की इस ऐतिहासिक पहाड़ी की प्राकृतिक संपदा को बेहतर समझने के लिए आवर हेरिटेज फाउंडेशन ने एक विशेष अध्ययन शुरू किया है। इस पहल के तहत दुर्लभ और स्थानीय पौधों, औषधीय वनस्पतियों तथा पहाड़ी पर फैल रही बाहरी प्रजातियों की पहचान की जा रही है। साथ ही इस पहाड़ी से जुड़े स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान और जीवन शैली पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विदेश स्तर पर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 32 अन्य घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार एक मालगाड़ी ने रेलवे क्रॉसिंग पर एक सार्वजनिक बस को टक्कर मार दी जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। तूफानी लेन कौन लाबू तेरूज में 90 साल के 90 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल मुनाफ जुमिया इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज शाम के 5 बजे उन्हीं के मकान कौन लाबू तेरूज से निकाल कर दफनाने के लिए खिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 5 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: You're listening to RM3 Radio, Mano.

0: नमस्ते अदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सुन रहे हैं RM3 पर एक अपना प्यारा सा प्रोग्राम फिल्मी कसले, और मैं हूं आपके साथ पूनम। दोस्तों, रविवार की शाम और दिल में एक अजीब सी बेचैनी, यही वक्त होता है जब इंसान को गज़ल की ज़रूरत होती है। और आज की महफिल सजी है दर्द और प्यार के नाम पर, क्योंकि जहाँ प्यार है वहीं दर्द है, और यही दर्द बनाता है और बताता है मोहब्बत कितनी सच्ची थी। तो समझ जाइए और अपने दिल को थाम के बैठिए, महफिल शुरू होती है अब।
1: RM3 रेडियो

0: गजल फिल्मी गजल।
1: 4:18 हो रहे हैं इस वक्त और आप सुन रहे हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर आपका फिल्मी गजलों का प्रोग्राम, जो कि बहुत ही प्यारा है, जो कि बहुत ही सादा है। कहते हैं कैफी आज़मी साहब, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे पास शायर हैं, शायरा हैं, जो लिखते हैं, ऐसा बहुत कुछ लिखा है उन्होंने और जो ऐसे लिखते हैं कि ज़िंदगी में लगता है कि शायद इससे अच्छा कोई सोच ही नहीं सकता। जैसे कैफी आज़मी साहब लिखते हैं, तुमसे मिलना था एक इत्तफाक शायद, तुमसे मिलना था एक इत्तफाक शायद, पर तुमसे पिछड़ना था एक सज़ा। तुमसे मिलना था इत्तफाक शायद, पर तुमसे पिछड़ना था एक सज़ा। प्यार में जीतना तो सबने सीखा, हार कर भी मुस्कुराना ये मैंने सीखा। सच बात है दोस्तों, प्यार में हार जाना कमज़ोरी नहीं, तो हार कर जो मुस्कुराए वही सबसे बड़ा कहते हैं आशिक होता है। और आज उन सभी आशिकों को सलाम जिन्होंने दर्द को भी इज्जत दी और उसको मोहब्बत दी। कहते हैं दर्द को कोई इज्जत नहीं देता, और जब उसको इज्जत मिलती है ना दर्द को, तो वो बनता है एक शायर या एक शायरा। और ऐसे ही हमारे शायर होते हैं जिन्होंने इतना प्यार दिया है, इतनी मोहब्बत दी है दर्द को, दुख को, और कहते हैं उसके बाद जो उन्होंने सुख पाया है वो इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने शायरी सीख ली। अगर आपको भी ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं हमें कि आपको कैसा लगता है 5250-6200 पर। ये सुनिए अगली नज़्म।
0: RM3 रेडियो।

0: नजर।
1: दोस्तों 4:25 हो चुके हैं और आप सबके मैसेजेस का धन्यवाद, जो भी इतने सारे मैसेजेस किए कि आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद है। चलते हैं बात करते हैं एक ऐसी शायरा की जिन्होंने बहुत कुछ लिखा। कहती हैं, दिल ने जब भी पुकारा तुम्हें आवाज़ दिल में ही रह गई, दिल ने जब भी पुकारा तुम्हें आवाज़ दिल में ही रह गई, मोहब्बत ये की ये कैसी रीत है, बात कही और अनकही रह गई।

0: दोस्तों सुग्रा जी ने सही कहा है, ये सिर्फ शायरी नहीं, ये हम सब की एक एक कहानी है। कोई ना कोई है ना जिंदगी में जिसे जब भी एक बात अधूरी लगती है और जब भी कोई बात अधूरी रह जाती है, बस एक बात होती है कि वो बात दिल पर आती नहीं। और जिसे कहते हैं कि उसे जाने दीजिए, जो दिल में बात आती है उसको कह दीजिए, उसको रोकना नहीं है, चाहे वह मुस्कान से, चाहे वह एक नज़र से, चाहे एक अल्फाज से। पर यह एहसास ज़रूरी है और उसे बताना ज़रूरी है कि हाँ सच में तुमसे मोहब्बत है।
1: RM3 Radio.

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: शकीला बानो भोपाली लिखती हैं, इश्क में जो मिला दर्द वो भी कबूल है, तेरी राह में बिछना मेरा असूल है। दोस्तों सच्ची बात है, सच्ची मोहब्बत में दर्द भी मीठा लगने लगता है, क्योंकि जब कोई दिल में बस जाए ना, वो उसकी दी हुई तकलीफ को भी किसी तोहफे जैसे समझता है।

0: नजर।
1: 4:38 हो चुके हैं। हम बात करते हैं फिल्मी गजलों की और ऐसी नज़मों की, ऐसी शायरी की जो कि अनोखी लिखी गई, दिल से लिखी गई। तो एक शायर हुए हैं नून मीम रशीद साहब। कहते हैं, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती कभी, बस रूप बदल लेती है। कभी याद बन जाती है, कभी खामोशी में ढल जाती है। तो अगर आपके दिल में भी कोई है जिसका नाम अब नहीं लेते, बहुत समय से उसको देखा भी नहीं, उसको याद भी नहीं किया, लेकिन एहसास में आज भी है, तो समझ लीजिए वो मोहब्बत आज भी जिंदा है, वो रूह में बस चुकी है।
0: RM3 Radio.
2: गुलाम अली साहब एक गायक के साथ साथ एक अच्छे कंपोजर भी हैं। उन्होंने कुछ आर्टिस्टों के लिए कंपोज किया, जैसे दिलराज कौर और

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी गजलें पूनम के साथ। एक शायर हुए अदीम हाशमी, लिखते हैं, तुझे चाहा तो ये महसूस हुआ धीरे धीरे, तुझे चाहा तो ये महसूस हुआ धीरे धीरे कि खुद से भी ज़्यादा ज़रूरी हो तुम। अब ये आलम है मेरी हर खुशी में कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर हो तुम। सच बात है दोस्तों, जो लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो आते तो एक खुशी की तरह हैं पर एक दुआ की तरह बन जाते हैं, और ऐसी ही दुआ कई बार हमने अपने घरों में देखी है। ये दुआएं ऐसी होती हैं, वो माँ से मिले, पिता से मिले या किसी से भी मिले, जो भी हमें प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो ऐसी दुआएँ हमें लेती रहनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट आप सुनेंगे नज़्म, ये सुनेंगे आप पपोन की आवाज़ में, शिकारा एल्बम से, बहुत ही प्यारी है। आप सुन के देखिए, आपको सुकून मिले।
1: RM3 Radio. Radio.
2: ऐ वादी शहजादी, बोलो कैसी हो? क्या आप भी वहां सैर शिकारा करते हैं? चार चिनार पे वक्त गुजारा

वो झील बर्फ हो जाती है जिसपे बच्चे खेल खिलारा करते हैं। ऐ वादी शहजादी, बोलो कैसी हो।

मेरी शहजादी अपनी क्या लिखूं, हर पल तेरी याद सताती रहती है, आती जाती।

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी कसलें और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप पूनम के साथ और ये आप ही का प्रोग्राम है। इसमें जो बातें हैं ये सब चीज़ें ये गज़ल नज़्म सब आपकी पसंद की होती हैं, बस हम तो सिर्फ कह देते हैं। चलिए बात करते हैं एक ऐसे शायर की जिन्होंने लिखा, शहज़ाद अहमद साहब। अब जो बीत गया वो किस्सा हुआ, अब जो है वही अपना हुआ, दिल ने सीखा है धीरे धीरे, हर दर्द भी एक रास्ता हुआ। देखिए जिंदगी रुकती नहीं, कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती, हम फिर भी धीरे धीरे सीख ही जाते हैं जीना फिर से बार बार। ये है दिलों की आवाज़ और इसमें यही होती है बात कि सिर्फ ये जो दिल है ये रुकता नहीं है, ये कहता रहता है सिर्फ एक ही बात कि कुछ भी कह लो बस हमें रुकना नहीं। तो बस फिल्मी गज़लों में ये एक प्यारा सा नज़्म आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: फिल्मी गजल, फिल्मी गजल।
1: दोस्तों, कुछ मोहब्बतें साथ रहकर पूरी होती हैं और कुछ सिर्फ यादों में खूबसूरत लगती हैं। आज की इस महफिल में अगर दिल थोड़ा सा मुस्कुराया हो या किसी की याद फिर से आई हो तो यही गजल का जादू होता है। मुझसे पहले आपके साथ थे प्रताप जी और मेरे बाद आ रहे हैं शीतल जी अपने प्रोग्राम के साथ। बने रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन पर। मैं थी आपके साथ पूनम। नमस्ते, आदाब, गुड नाइट। ध्यान रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय और इसी चैनल पर। बस इंजॉय कीजिए आपकी ये आखिरी नज़्म।
0: RM3 रेडियो।

0: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं।
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: साया जो हर पल हमारे साथ रहता है एक ऐसा समय भी आता है कि वो साया साथ छोड़ जाती है पर जो हमेशा दामन पकड़े रहती है वो है यादें
5: भारतीय सिनेमा के हर दौर की अपनी खासियत अपनी विशेषता होती है कुछ नए कलाकार कुछ नए गीतकार संगीतकार या फिर कुछ नई आवाजें जुड़ते रहते हैं 80 के दौर में एक अनोखी आवाज जो कि दिल को छू जाती थी अंदाज एकदम अलग आज यादें प्रोग्राम में इसी आवाज के साथ उन दिनों को याद कर लेते हैं शबीर कुमार जो कि 80 के दौर में पूरी तरह से छा गए थे
6: I love you. You love me? I love you. तुम मुझसे प्यार करती हो

उनके आवाज में खासियत ये थी कि हर एक गाने में वो जान डाल देते थे। अपने इस मखमली आवाज के जरिए 80 के दौर को दी एक नई पहचान। ये भी कह सकते हैं कि 80 का दौर रहा शब्बीर कुमार का दौर।

शबीर कुमार की आवाज बेहद ही खास, किसी परिचय के वो मोहताज नहीं थे, उनकी आवाज ही उनकी पहचान बनी। एक ऐसी आवाज जो कि हिंदी सिनेमा पर पूरी तरह से छा गई। अनगिनत सुपरहिट गाने, अनगिनत सदाबहार गाने उन्होंने बॉलीवुड को दिए। 1983 में कुली, वही बेताब, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, तेजाब, लिस्ट काफी लंबी है।

शबीर कुमार के बारे में बात करें, उनका असली नाम शेख शबीर अहमद। उनका जन्म 26 अक्टूबर सन 1954 यानी कि 1954 को बड़ौदा गुजरात में हुआ। बचपन से ही वे संगीत में बहुत दिलचस्पी रखते थे और रफी साहब की आवाज़ की नकल करते थे। हालांकि उनकी आवाज़ रफी जी की आवाज़ से बड़ी मिलती जुलती थी। और तभी एक स्टेज शो के दौरान उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया द लोकल रफी के नाम से। असल में संगीत के मंच पर रफी साहब ही उनके आदर्श थे।

मोहम्मद रफी के जाने के बाद 1980 में उन्होंने बतौर श्रद्धांजलि रफी जी के सम्मान में एक शो का इंतजाम किया और इस शो से उन्हें बहुत लोकप्रियता बहुत पॉपुलैरिटी हासिल हुई और ये कह सकते हैं कि ये शो उनके जीवन के उनके कैरियर के सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट रहा।

उसी दौरान उस दौर के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना ने उसे नोटिस किया। एक गाने में एक छोटा सा चांस दिया। उषा खन्ना के ही रिकमेंडेशन पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शबीर कुमार को दिया उनका पहला ब्रेक। 1983 की फिल्म, एक्शन कॉमेडी फिल्म, डायरेक्टर बाय मनमोहन देसाई, कूली, ये उनका पहला ब्रेक, और वो भी किशोर कुमार के बदले में द ग्रेट अमिताभ बच्चन की आवाज बनने वाले थे, और ये भी हुआ एक्सीडेंट से।

फिल्म कूली एक सुपरहिट फिल्म के साथ साथ एक सुपरहिट म्यूजिकल मूवी भी बने। शबीर कुमार की आवाज एकदम फिट रही अमिताभ बच्चन के लिए। रातों रात शबीर कुमार सफलता के एक अलग मंच पर पहुंच गए। पूरी दुनिया पर उनकी आवाज पूरे बॉलीवुड पर पूरे संगीत की दुनिया पर छा गई। एक न रुकने वाली गाड़ी में शबीर कुमार ने कदम रखा।

0: लंबो
1: टिंगू लंबो
2: सफलता उनके कदम चूमने लगे 1983 में इंट्रोड्यूसिंग सनी देओल और अमृता सिंह रोमांटिक ड्रामा मूवी जो कि सुपरहिट फिल्म साबित हुई और साथ में गाने भी एकदम लोकप्रिय हुए फिल्म बेताब यहां उन्होंने 5 गीतों में अपना प्लेबैक दिया कुछ ऐसे गाने आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में दिए आज भी इन गीतों के जरिए प्यार करने वाले अपने प्यार मोहब्बत के इजहार करते हैं

यहाँ से दौर शुरू हुआ शब्बीर कुमार का। हर संगीतकार के साथ, चाहे वो बप्पी लहरी हो, अनु मलिक हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, जतिन ललित, चित्रगुप्त, इन सभी महान संगीतकारों के साथ शब्बीर कुमार ने काम किया। अनेकों भाषाओं में उन्होंने प्लेबैक दिया। कुछ 3,700 गाने दिए 250 फिल्मों में। 83 में ही वो सात दिन, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, प्यार के खूबसूरत फलसफे शब्बीर कुमार सुना गए। लता जी के साथ एक ड्यूट अनिल कपूर के लिए उन्होंने प्लेबैक दिया, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। नमस्कार, सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। खोपो के लायन माउंटेन में एक ऐतिहासिक पहाड़ी की प्राकृतिक संपदा पर विशेष अध्ययन, आवा हेरिटेज फाउंडेशन की

0: पहल में दुर्लभ पौधों औषधीय वनस्पतियों और बाहरी प्रजातियों की पहचान की जा रही है। मॉरिशस में एचआईवी संक्रमण को लेकर चिंता बनी हुई है। साल 2025 से अब तक 499 नए मामले दर्ज। इसी के मद्देनजर कुडो वाटरफ्रंट में इसी समय इंटरनेशनल एड्स कैंडललाइट मेमोरियल का आयोजन किया जा रहा है। फ्लक के बाद अब पोर्टली के जीतू अस्पताल में भी नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट शुरू की गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने इसका उद्घाटन किया। मॉरिशस निवेश के लिहाज से अफ्रीका का सबसे सुरक्षित देश बनकर उभरा। हेनली एंड पार्टनर्स की नई रिपोर्ट में मॉरिशस को दुनिया में 61वां और अफ्रीका में पहला स्थान मिला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेदरलैंड्स के साथ भारत के संबंध और मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी है। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। घोंपो के लाउन माउंटेन में दक्षिण पूर्व की इस ऐतिहासिक पहाड़ी की प्राकृतिक संपदा को बेहतर समझने के लिए आवर हेरिटेज फाउंडेशन ने एक विशेष अध्ययन शुरू किया है। इस पहल के तहत दुर्लभ और स्थानीय पौधों, औषधीय वनस्पतियों तथा पहाड़ी पर फैल रही बाहरी प्रजातियों की पहचान की जा रही है। साथ ही इस पहाड़ी से जुड़े स्थानीय लोगों के पारंपरिक ज्ञान और जीवन शैली पर ध्यान दिया जा रहा है। करुणा लालू।
1: देश के दक्षिण पूर्व के प्राकृतिक दृश्य में अपनी विशिष्ट आकृति के लिए पहचाने जाने वाले लायन माउंटेन की जैव विविधता तथा स्थानीय निवासियों और इस ऐतिहासिक पहाड़ी के बीच समय के साथ बने संबंधों पर एक अध्ययन किया जा रहा है।
2: Je suis à la montagne parce que tous les jours, une partie liée à, vraiment à, au pied de la montagne, c'est en plantation. Et après, je aussi exploite la montagne pour ben, différentes plantes, ben, plantes médicinales, mais aussi ben, plantes qui servent un petit peu dans la construction et aussi construction des bateaux.
1: Shodhkarta, Paryavaran Visheshajyon aur Kshetra ke Nivasiyon dwara, wahan maujood sthaniya aur akramak prajatiyon ki pehchan और औषधीय पौधों का भी अध्ययन किया जा रहा है।
2: और जुमला जनु की जाफलिया चिलीजे एली कॉम्प्रेंड कि डॉन ले फ्यूचर सीली आल डेट्रुए सा सं एन प्लान बी डे रिप्लांटेशन ओ क्वा कोमेंस अ पा अफेक्टे डॉन ले फ्यूचर पर वे बना कूप जोट मोड डे वी ओ क्वा पार्सी पोर नू ओसी सी इंपोर्टेंट प्रोजर्व सा पैट्रिमोन इमटेरियल की असोसिए एक्स ला फासों डे फेयर अलो अ कॉज सा की कुमा जनु बिजन नू नेन प्लान डे de survey, conservation et sensibilisation et aussi replantation ou quoi, ce qui est bizarre pour Benjamin.
1: Is pehel ke madhyam se Our Heritage Foundation ka uddeshya Lion Parvat ke behtar sanrakshan ko badhava dena hai. Saath hi is parvat se judi paramparik prathaon aur sthaniya gyan ko bhi mahatva dena hai.
0: फ्रेंच भाषा का स्तर अब अभिभावकों और अध्यापकों दोनों के लिए चिंते का विषय बना हुआ है। स्कूल सर्टिफिकेट के हालिया परिणामों में आधे से भी कम छात्रों ने फ्रेंच में डिस्टिंक्शन या क्रेडिट हासिल किया और 13,000 छात्रों में से केवल 3% विद्यार्थियों को ही ग्रेड 1 मिला। शिक्षकों के अनुसार इस गिरते स्तर की एक बड़ी वजह बच्चों का ज़्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताना और पढ़ने की आदत में कमी लाना है। दुनिया भर में आज समलैंगिकता के खिलाफ भेदभाव और घृणा के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस ऐतिहासिक फैसले की याद दिलाता है जब 17 मई 1990 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने होमोसेक्सुअलिटी को मानसिक बीमारियों की सूची से हटा दिया था, जिसे मानव अधिकारों की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। हालांकि कानूनों और अधिकारों में प्रगति के बावजूद जमीनी स्तर पर भेदभाव और अस्वीकार की अपना अब भी कायम है। मॉरिशस में एचआईवी संक्रमण को लेकर चिंता बनी हुई है। साल 2025 में अब तक 491 नए मामले सामने आए हैं और 25 से 44 वर्ष की आयु वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। इसी के मद्देनजर आज शाम इसी समय कुडो वाटरफ्रंट में 21वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स कैंडललाइट मेमोरियल का आयोजन किया जा रहा है, जहां मोमबत्तियां जलाकर एचआईवी एड्स से जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रतिनिधि, कलाकार, परिजन और एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोग शामिल हैं।

0: फ्लाकेसर अनिरुद्ध जगन्नाथ अस्पताल के बाद अब पोटली के जीतू अस्पताल में भी एक नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट कायम की गई है। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू और चुनाव क्षेत्र के सांसदों की उपस्थिति में हाल में किया गया। इस नई इकाई का उद्देश्य गंभीर रूप से घायल और आपात स्थिति वाले मरीजों को तेज और बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल बिचू ने कहा कि जल्द ही अन्य इलाकाई अस्पतालों में भी ऐसी ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट कायम की जाएगी। और ये विषय जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, गंगा तालाब में पेश आई घटना के बाद इस पवित्र स्थल में मर्यादित आचरण और उचित वस्त्र की आवश्यकता फिर से चर्चा में आ गई है। चलिए सुनते हैं इस रिपोर्ट को।
1: ये देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थलों में से एक हैं गंगा तालाब, जो लगभग 550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों का स्वागत करता है, जो इस जल स्थल के सामने श्रद्धा अर्पित करने आते हैं, जो भारत की गंगा नदी की याद दिलाता है। लेकिन घोंबासें दुनिया भर के पर्यटकों द्वारा नियमित रूप से देखा जाने वाले एक स्थल भी है। ये जगह विशेष रूप से अपनी शांति के लिए सराही जाती है।
2: आस्था किसी पर थोपी नहीं जाती और जिन लोगों की आस्था है उनका सम्मान करना चाहिए, नहीं तो एक साथ शांति से रहना कठिन हो जाएगा।
1: यदि कुछ लोग ये मानते हैं कि उन्हें इस स्थल पर पालन करने वाले नियमों के बारे में पहले से सूचित किया गया है, तो अन्य लोग इसे यहाँ पहुँच कर ही जानते हैं।
2: हम ध्यान रखते हुए नियमों का पालन कर रही हैं। मैं अपने दौरे के दौरान ज्यादा समीप नहीं गया क्योंकि मैंने सही पोशाक नहीं पहना हुआ है, पर अन्य धर्मों और संस्कृति के बारे में मुझे जानकर खुशी हो रही है। मैंने शॉर्ट पहना हुआ है और अपने गाइड के साथ आई हूँ, जिन्होंने हमें बताया कि पैरों को ढकना चाहिए तथा यहाँ के मंदिरों में धार्मिक विधियों के बारे में भी समझाया और ये भी बताया कि हमें स्वयं को एक टॉवल के साथ ढकना चाहिए और मंदिरों के अंदर जाते समय जूतों को बाहर उतारना चाहिए। मेरे लिए ये एक अच्छा अनुभव रहा।
1: ये सुनिश्चित करने के लिए कि जानकारी सभी के लिए स्पष्ट रूप से सुलभ हो, नेशनल हेरिटेज फंड इस समय इस स्थल पर पालन किए जाने वाले आचार संहिता पर काम कर रहा है, जिसे 2023 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। नेशनल हेरिटेज फंड के अध्यक्ष कहते हैं,
2: एक धार्मिक संगठन ने प्रांगण में यहाँ एक नोटिस बोर्ड लगाया है, पर इस घटना के बाद स्थल पर जगह जगह पर ज्यादा साफ व सरल तरीके से समझाया हुआ बोर्ड लगाना होगा। NHF और मंत्रालय के सहयोग से हम चंद गाइडलाइंस पर काम कर रहे हैं, जो निसंदेह स्थल पर दृष्टिगोचर होना चाहिए।
1: एक बार ये तैयार हो जाने पर इसे कला और संस्कृति मंत्रालय के पास प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद ये मंत्रिपरिषद की बैठक में विचार के लिए भेजा जाएगा। इस बीच टूरिज्म अथॉरिटी को संबंधित मंत्रालय की मांग पर गंगा तालाब पर पर्यटकों को पालन करने योग्य प्रथाओं के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए बोर्ड लगाने का काम सौंपा गया है।
0: मॉरिशस निवेश के लिहाज से अफ्रीका का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद देश बनकर उभरा है। ब्रिटिश संस्था हेनली एंड पार्टनर्स और अल्फा जियो की नई वैश्विक निवेश जोखिम और आर्थिक मजबूती रैंकिंग में मॉरिशस को विश्व स्तर पर 61वां स्थान मिला है और वह पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था का खुलापन और आय के विभिन्न स्रोत मॉरिशस की सबसे बड़ी ताकत मानी गई है। वैश्विक स्तर पर स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर कायम, जबकि डेनमार्क और नॉर्वे उसके बाद हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक स्तर की खबरों में मॉरिशस के पूर्वी हिस्से में थोडोडूस गांव में भक्ति, श्रद्धा और शिवमय वातावरण का अद्भुत संगम हाल में देखने को मिला, जहां काली शक्तिशाली संगठन के तत्वावधान में मासिक शिवरात्रि के अवसर पर एक भव्य आध्यात्मिक संध्या का आयोजन किया गया। शाम 6 बजे से शुरू हुए इस विशाल आध्यात्मिक कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालु महादेव की भक्ति में लीन नजर आए। अशिता रघु की विशेष रिपोर्ट पेश है।
2: पिछले वर्ष से मॉरिशस के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित हो रही मासिक शिवरात्रि श्रृंखला का ये विशेष आयोजन इस बार थोडोडूस में हुआ, जहां युवा भक्तों और महादेव के अनुयायियों को मंच पर अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर मिला। भजन, शिव स्तुति और मंत्रों की गूंज से

पूरा वातावरण भक्तिमय बन गया। हर हर महादेव के जय घोष के बीच हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में विशेष मासिक अभिषेक भी संपन्न हुआ। दीपों की रोशनी, शंख ध्वनि और भक्तों की आस्था ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया, जो महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा और प्रेम का उत्सव दर्शा रहा था।

0: नए वातावरण है, जहाँ जहाँ शिव बुलाते हैं हम आ जाते हैं।
1: मेरे आराध्य हैं और उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं अपने धर्म के लिए रक्षा करूं और एक धर्म रक्षक बनूं।
2: महादेव को भोले, रुद्र व नटराज भी बुलाती हैं और यहाँ के प्रत्येक युवा कलाकारों के लिए महादेव के चरणों में भजन व कला प्रस्तुत करना आशीर्वाद समान रहा।
3: शिवा
2: को नटराज के रूप में पूजा करती हैं और हमारी टोली यहाँ महादेव को अपनी कला, भजन और नृत्य समर्पित करने आई है। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं, एक बहुप्रतीक्षित अवसर रहा पूर्व के हजारों भक्तों को एक साथ लाने का तथा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का।
4: आज एक बहुत गर्व की बात है कि मासिक शिवरात्रि तुलदुष में हो रहा है और आज मैं और मेरी पत्नी हम यजमान इस मासिक शिवरात्रि का।
2: इसी अवसर पर सत्यम शीर्षक पर आधारित भजनों व स्त्रोतों पर खियुली राम सेना द्वारा एक पुस्तिका का लोकार्पण भी किया गया। भक्ति, संगीत और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर ये मासिक शिवरात्रि आयोजन एक बार फिर श्रद्धालुओं के दिलों में महादेव के प्रति प्रेम और आस्था की ज्योति ज्वलित कर गया।
5: फ्लाकेसर अनिरु जगनाथ अस्पताल के बाद अब पोटली के जीतू अस्पताल में भी एक नई ट्रोमा एंड इमरजेंसी यूनिट कायम की गई है। इसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किया गया।
6: डॉक्टर जीतू अस्पताल देश के उन अस्पतालों में से एक हैं जहां सबसे अधिक मरीज आते हैं, दिन में 1000 से ज़्यादा, जिनमें गंभीर मामले भी शामिल होते हैं। नई ट्रोमा इमरजेंसी यूनिट के शुरू होने से मरीजों की देखभाल अधिक तेज तथा व्यवस्थित हो सकेगी। मरीजों की गंभीरता के अनुसार प्राथमिकता तय की जाएगी।
7: Alors, nous, en vue sur ce système-là, nous mettons leur couleur, quand ils donnent ce 25 tomes, nous connaissons qu'ils ont besoin d'un traitement plus avant qu'ils l'ont là. Ça pour aider qui nous tient à une personne qui ne peut plus pas bien, plus pas stable, là, nous donnons un traitement assez plus vite que les autres. Dans Accident and Emergency, c'est 650 personnes pour 24 heures. Et dans le Unsorted, nous mettons les Green Zone. Là-bas, c'est 500 environ, de 8h grand matin jusqu'à 10h le soir.
6: इस यूनिट की जिम्मेदारी सामूहिक के आपातकालीन चिकित्सकों के हाथों में होगी।
7: Une personne venue, disons une polytraumatisée, une blessée beaucoup, lui pour superviser pour une urgentiste. Là, fait tout, get-li, stabilise-li, fait ce scan, fait tout ce qu'il a besoin de faire, ce écho, tout cela, stabilise tout. Là, c'est là pour avoir son opération avouée, c'est là pour avoir son intensif pour avouer.
6: नई इकाई में एक छोटी ऑपरेशन थिएटर भी है। अन्य क्षेत्रीय अस्पतालों में भी जल्द ही इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी।
8: Ça ne travaille là pas si possible si nous pas gagnons un corps médical bien fort, bien soudé, qui bien dynamique. Nous tout connaissons un manque de docteurs, un manque d'infirmiers, mais malgré ça, nous pouvons gagner notre collaboration, nous pouvons faire ce travail-là.
6: ये परियोजना सरकारी बजट का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना है।
5: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला संक्रमण को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ एक आपात बैठक लगाई है। इटुई प्रांत के कई इलाकों में संक्रमण फैलने, संदिग्ध मौतों और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के बाद निगरानी और बचाव कदमों को और तेज कर दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ आवश्यक चिकित्सीय सामग्री भी भेजी जा रही है। वहीं युगांडा, दक्षिण सूडान और जाम्बिया जैसे देशों में भी सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
9: कोंगो के इतुरी राज्य में सेहत की ये मुश्किल हालत अब वैश्विक चिंता का विषय बन गई है। इबोला के करीब 250 संक्रमित मामले पाए गए हैं और मौतों की तादाद 80 तक पहुंच गई है। किंशासा में भी कुछ संक्रमित मामले पाए गए हैं। इबोला के शुरुआती संकेतों में बुखार, दर्द, थकान, सर दर्द, गले में खरोच, उल्टियाँ, डायरिया, रैश और बिगड़ती हालत में ब्लीडिंग भी होने लगती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आपात स्थिति की घोषणा की क्योंकि तंजीम के मुताबिक संक्रमितों का आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है। फिलहाल 8 प्रयोगशालाओं में वायरस की पुष्टि की गई है और दूसरे 3 स्वास्थ्य जोन्स में शक की मामले और मौतें दर्ज हैं। पड़ोसी देश युगांडा में भी 2 मामलों की पुष्टि की जा चुकी है।
5: थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में शनिवार को हुए एक दर्दनाक रेल हादसे में कम से कम आठ लोगों

0: की मौत जबकि 32 अन्य घायल बताई जा रही हैं। ताज़ा जानकारी के अनुसार एक मालगाड़ी ने रेलवे क्रॉसिंग पर एक सार्वजनिक बस को टक्कर मार दी जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य खबरें जो आज सुर्खियों में हैं उनमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेदरलैंड्स के साथ भारत के बढ़ते संबंधों को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण और भविष्य की दिशा तय करने वाला बताया। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया समझौते और साझेदारियां भारत और नेदरलैंड्स की दोस्ती को नई गति देंगी। दोनों देशों के बीच 17 महत्वपूर्ण समझौतों और सहयोग योजनाओं पर सहमति बनी है। सुमैरा अकबर अली।
1: भारत और नेदरलैंड्स ने 17 रणनीतिक समझौते तय किए हैं जो जल, कृषि, टेक्नोलॉजी वगैरह जैसे अहम क्षेत्रों पर मबनी हैं। इनसे दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते एक नए सतह तक पहुंच गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत में दुनिया की सबसे गतिशील अर्थनीति है जो मुसलसल तौर पर गए 12 वर्षों से तेजी से आगे बढ़ रही है।
2: इलेक्ट्रॉनिक जो पहले भारत का बड़ा इम्पोर्ट आइटम था आज भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं जिसका लाभ उठाकर आप पूरे विश्व के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स से हमने अपना इकोनॉमिक DNA ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी दिशा स्पष्ट रही है। प्राइवेट सेक्टर को पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी देना और उनके लिए अवसर बढ़ाना, स्पेस, माइनिंग या न्यूक्लियर एनर्जी, हमने हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है।
1: एक कार्य सत्र के दौरान डच प्रधानमंत्री ने कहा कि नेदरलैंड्स भारत के साथ रिन्यूएबल ऊर्जा, प्रतिरक्षा, हाईटेक आदि सेक्टरों में बड़ी ऐतिहासिक परियोजनाएं चलाने के लिए आशावादी है।
3: We can drive ambitious innovation to strengthen both our countries.
1: हम एक साथ दोनों देशों की काबिलियतों को मजबूत करने के लिए कदम उठा सकते हैं। स्वच्छ ऊर्जा, जल संचालन, प्रतिरक्षा एवं हाईटेक जैसे अहम सेक्टरों में ये क्षेत्र हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नए हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए हमारा सहयोग बरसों पुराना है।
3: We've learned that we have a great deal to offer each other.
1: भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस औपचारिक नेदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारत नेदरलैंड्स रणनीतिक साझेदारी 2026-2030 पर एक रोड मैप को भी आम किया गया है।
0: और अब चले जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है। आज रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। कल सुबह के दौरान देश के दक्षिण पूर्व में रह रहकर बरसात होगी। पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर आज रात को भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। कल दिन के दौरान के मौसम की बात करें तो ऊंचाइयों पर मौसम कुछ खराब हो सकता है। दक्षिण पूर्व की दिशा से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 17 से 19, अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 28 से 30 और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्यास्त 5:40 पर, सूर्योदय 6:32 पर होगा।

0: तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजल, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: Shok samachar suni, Grand Port Road, Nouvelle-France mein. 80 साल की टीएस ओल की श्रीमती अनीता जालिम की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम पर बुत्सिया, लोग उन्हें सांता के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल दिन

के 2 बजे उनके बेटे सेवन जालिम के मकान नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM. बैटका रोड मोंगू में 71 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की मिंत्रा आनंदनी मातापालत की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम भगमोनिया, लोग उन्हें सीला के नाम से अधिक जानती थी. उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे बिनेश मातापालत के मकान मोंगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. रोते बाउंड्री रोजिल में सेंट पैट्रिक चर्च के पास 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की भगमनियासी बालक की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम काली, लोग उन्हें फिफी के नाम से अधिक जानती थी. उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोते मोगोश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. क्रिमेशन रोड प्लैन दे रोश में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की देवानन जंगटू की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उन्हीं के मकान प्लैंडेगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM. एवेन्यू कोलविल बेलरोस में 70 साल की 70 ईयर्स ओल्ड की श्री श्याम चिनिया की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थी कल दिन के एक बजे उन्हीं के मकान बेलगो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. वालोरी मुकामी 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के सिपरसाद एमराज की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें दाना के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थी कल सुबह के 8 बजे मुका से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकोस्टों सैंपिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 8 AM. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

सीबी की ओर से ही दो जरूरी विज्ञप्तियां सुनिए। सीबी मोसेलमान दनपत ए सोलीज श्योमेरी अम्बेल के ग्राहकों को सूचित करता है कि मंगलवार 19 मई 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मंगलवार 19 मई 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी मोसेलमो तनाकुदी मोसेलमो लाइमुन एनाश देसेरियन बेल सुरीनाम के ग्राहकों को सूचित करता है कि सोमवार 18 मई 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर शाम के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सीबी ग्राहकों को सूचित करती हैं कि मरम्मत कार्य के समाप्त होते ही बिना कोई पूर्व सूचना बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी। सीबी सभी ग्राहकों के प्रति इन असुविधाओं के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी दो व्यक्तियां सीबी की ओर से।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: शाम के 6:30 बज चुके हैं। नमस्कार श्रोताओं, MBC रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं RM3 के साथ रेडियो मनोरंजन, और आज रविवार 17 मई 2026, जी हाँ, एक और खूबसूरत प्रोग्राम आपके नाम। और हर रविवार की तरह मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, और ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। दोस्तों, कहते हैं ज़िंदगी का सफ़र जो है एक ऐसी किताब है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता रहता है। कुछ पन्ने खुशी से भरे होते हैं, कुछ दर्द से, लेकिन हर लम्हा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ज़रूर जाता है। जो लोग इस सफ़र में मिलते हैं वही आपकी कहानी को खूबसूरत भी बनाते हैं और यादगार भी।

ये जिंदगी का सफर बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। 6:42 हुए हैं। श्रोताओं, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री ने भाव गीत को सिर्फ संगीत का एक रूप नहीं बल्कि जज्बातों की गहराई को बयां करने का जरिया माना है। पुराने दौर से लेकर आज तक कई कलाकारों, संगीतकारों और गीतकारों ने प्रेम, विरह, खुशी, दर्द और जिंदगी के अनेक रंगों को भाव गीत के माध्यम से सुंदरता से पेश किया है। इसी वजह से बॉलीवुड में भाव गीत पर हमेशा गहरी चर्चा होती रहती है, क्योंकि ये लोगों के दिल को सीधा छू लेने की ताकत रखता है।

0: जी हाँ प्यारे श्रोताओं, इसी गीत के साथ नई सोच कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो चला। आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, इसके बाद दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आप एंजॉय कर पाएंगे।
1: तुम लोग सब चुप क्यों हो गए? गाओ ना बच्चों, गाओ।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए 7 बज चुके हैं, जैसे कि हमने कहा नई सोच कार्यक्रम के बाद दिलों की आवाज प्रोग्राम आप सुनने जा रहे हैं जी हाँ, खासकर ऑन RM फ्री रेडियो, रेडियो मनोरंजन। आज रविवार 17 मई 2026 जी हाँ, ये रोमांटिक प्रोग्राम है जहाँ पर 80s और 90s के गाने हम चलाएंगे और मैं उषा कौर आप लोगों के साथ और हम साथ निभाएंगे रात के 9 बजे तक। और नंबर है 4028070, आप हमें कॉल कर सकते हैं और नंबर मैसेज आप भेज सकते हैं ऑन 5250620020।

धन्यवाद साथ देने के लिए और जिन लोगों जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो उनको हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे और साथ में जो लोग ड्राइव कर रहे हैं इस समय उनके लिए भी ये गाना जाएगा बहुत ही रोमांटिक गाना है और खासकर ये गाना असलम के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग चलिए ये रोमांटिक गाना आपके नाम इस रोमांटिक मौसम में

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: सवा सात बज चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर अगला गाना हम चलाएंगे सोनल के लिए। जी हाँ, और गाना वो मांग रहे हैं दुल्हन। जी हाँ, नई नवेली दुल्हन के लिए। जी नहीं, वो शादी करने वाली है बहुत ही जल्द, और वो है होने वाली दुल्हन नेहा के लिए। जी हाँ, अगला गाना सैनिक फिल्म से लिया गया, और खासकर गाना भाषावन की ओर से भाभी के अभिनव किया नाव्या तिलक फैमिली के लिए। चाची गीता और घो पापा खुशिया और घो मामा जो हैं सोना मती, क्या बात है। तो पूरे परिवार की ओर से हमारी प्यारी नेहा को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ये गाना चल पड़ा, और ये गाना उन सभी नई नवेली दुल्हन के लिए जिन्होंने शादी की है, माँ बाप का घर छोड़ा है। तो चलिए, नई जिंदगी आपको मुबारक हो।

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: 7:23 हुए हैं। जी हाँ, आप यहाँ पर सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। कई लोग इस समय जुड़ चुके हैं और कुछ लोग अभी साइड पर है। अरे भाई, अभी ठंड का मौसम है, ज़रा संभाल के, क्योंकि बीमारी पड़ सकती है। लेकिन हमें पता है जब मस्ती करनी है ना, तो क्या सर्दी क्या गर्मी, बस ऐसे ही में लग जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कल हो ना हो, लेकिन पूरे प्रिकॉशंस के साथ। और अब जब ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो बस सावधानी बरतें। और यहाँ पर खूबसूरत गाना हम चलाएंगे ललिता जी के लिए, जो हमें सुन रही है कालबास से। और गाना हम चला रहे हैं उनके लिए, उनके सभी बच्चों के लिए। और साथ ही साथ में सूरज जी हैं जो इस समय हमें सुन रही है फ्रॉम ट्रियोले। गाना उनके बेटे निशाल के लिए और बीसेस ऑफ फैमिली के लिए, और जो हमारे पूरे रेडियो मनोरंजन टीम है उनके लिए भी ये गाना जाएगा। और यहाँ पर आदाब आदाब आपको रिहाना जी, जो हमें सुन रही है फ्रॉम फिनिक्स, आपके लिए भी गाना जाएगा। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत गीत है, मस्ती फिल्म से लिया गया। और यहाँ पर साधना जी को हम कैसे भूल सकते हैं, जो हमें सुन रही है सोहिनाम से। बहुत ही धन्यवाद आपको जो आप साथ दे रही है। चलिए आनंद राज आनंद की आवाज में

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चले दिलों की आवाज़ प्रोग्राम को हम जारी रखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप सुन रहे हैं 80s और 90s के गाने, सागर का ये खूबसूरत गाना एस पी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में। और यहाँ पर खास गाना हम चलाने जा रहे हैं 90s से लिया गया कुमार सानू की आवाज़ में, और ये गाना फिल्म सैनिक से लिया गया। जी हाँ, एक और गाना इसी फिल्म से लिया गया, और ये गाना खासकर गिरीश हरलोल के लिए जो हमें सुन रहे हैं, और साथ ही साथ में हमारे सभी 90s लवर्स के नाम।

0: दिलों की आवाज,
1: सात बजकर 42 मिनट हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं RM Free Radio, रेडियो मनोरंजन दिलों की आवाज़ प्रोग्राम रोज़ की तरह। और आज रविवार का दिन है और रविवार का दिन जो होता है, मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए, और आप लोग सुन रहे हैं हमारा जो शो है और देख भी रहे हैं लाइव फ्रॉम टिकटॉक। थैंक यू सो मच, बहुत ही धन्यवाद आप सबको। और यहाँ पर 80s और 90s के गाने, अगला गाना जालिम फिल्म से लिया गया। जी हाँ, और ये गाना खासकर गुलशन भोला के लिए। हैप्पी संडे टू यू ऑल, हैप्पी संडे टू यू टू। और गाना खासकर उनकी मामा प्रभा, उनकी बहन दीक्षिता और अयेशा और पूरे भोला फैमिली के लिए। और साथ ही साथ में तायक के रहने वाले बडवग बिदेसी जी, और गाना रोमांटिक गाना उनके स्वीट हार्ट के लिए, क्या बात है, अनुषा केदन जो रहती है मोताबा, और रुमिता गुजा है जो हमें सुन रही है, उनके लिए भी ये गाना जाएगा, उनके लिए, उनके दोस्तों के लिए, दशरथ और गुजा परिवार के नाम।

0: और खास गाना इंदिरा राम दुनिया जी हाँ गाना वो मांग रही है प्रतिमा चेस्टा और उनकी नाती नरेना के नाम कविता अनु हेलो आपको माधुरी जी चलिए गाना चल पड़ा आपके लिए भी तिलक कुमार
1: मुबारक हो
0: और हमारे सभी लिसनर्स 80s और 90s के संगीत लवर्स के लिए

0: दिलों की आवाज़।
1: 7:51 हुए हैं और यहाँ पर जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपको याद दिला दें कि आज 17 मई 2024 है और आज के दिन बहुत ही सारे लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो हम उनको कैसे भूल सकते हैं। और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे अमिता गजाधर के लिए, जो रहती है प्लेन मानियो, आज उनका जन्मदिन है। और बेस्ट विशेज फ्रॉम शारदा लखनऊ। और जैसे कि हमने कहा है, अगर आप लोग इस समय हमें सुन रहे हैं और आज आप जन्मदिन मना रहे हैं, आज आपका दिन है, तो ये गाना आपके लिए भी जाएगा। और अमृता

जो है अपने भाई पूपू का जन्मदिन मना रही है और आज वो रहते हैं जुबई, तो भाई पोपो को भी हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे पूरी एमबीसी टीम की ओर से, जो भी बर्थडे मना रहे हैं। तो चलिए हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। ये गाना चल पड़ा आप लोगों के नाम, दिलों की आवाज़ प्रोग्राम आरएम फ्री रेडियो मनोरंजन।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: जी हाँ, ठीक 8 बज चुके हैं दोस्तों, और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे साजन की सहेली फिल्म से लिया गया, और गाना खास कर तिलक कुमार जी के लिए। जी हाँ, उनके नाम हम गाना चलाएंगे, और साथ ही साथ में शारदा सरस्वती जी अपनी मामा के लिए गाना मांग रही है, और अंजू के नाम गाना जाएगा उनके पति जय की ओर से, और साथ ही साथ में दाहिना जो है हमें सुन रही है, थैंक यू सो मच आपको। निवेद भी हमें सुन रहे हैं, धन्यवाद। दिनेश फ्रॉम नेपाल, बहुत से लोग हैं, कुछ लोग भी जो हमें सुन रहे हैं सुरीनाम साउथ अफ्रीका से, क्या बात है, देख भी रहे हैं, जैसे कि हमने कहा है लाइव टिकटॉक भी चल रहा है यहाँ पर, और आप हमें देख रहे हैं, धन्यवाद। और मॉड अल्बिया के रहने वाले राज सिंह दुखवा, उनके नाम भी गाना हम चलाएंगे। माला जी जो रहती है माला जरी फ्रॉम पिछित रिट्रेट, ज्ञाना सियू सगन उनके नाम भी, और दाहिना जो है गाना मांग रही है अपनी अपनी दो गुड़िया के लिए, शैना और रेहाना। चले गाना चल पड़ा रफी साहब और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में।

0: दिलों की आवाज की
1: आवाज ओ बेवफा हम तो कहते हैं कि बेवफा तो नहीं होते हैं लोग क्योंकि हालात जो होती है वो बदल जाती है और लोगों को मजबूर कर देती है कुछ फैसले लेने में 8:07 हुए हैं और यहाँ पर गाना हम चलाएंगे फरेब फिल्म से लिया गया ये गाना जो है ज्ञान सियू सगन के

और साथ ही साथ में हिजाज नसर अली के नाम गाना जाएगा माडवे डुमा आपके नाम भी ये गाना हम चला रहे हैं और यहाँ पर साथ ही साथ में अनीता जी जो हमें सुन रही है क्यों पिप से

0: RM3 Radio.
1: जी हाँ, जैसे कि हमने कहा है पहले और आज भी कहते हैं, दिलों की आवाज़। जी हाँ, दिल जुबा जो कह नहीं सकते हैं वो दिल कहना चाहता है। और यहाँ पर खास गाना नज़र की बात है, और नज़र भी जो है बहुत कुछ कहना चाहती है। और यहाँ पर खास गाना मौगवित के लिए जो हमें देख रही है, सुन रही है, और साथ ही साथ में रफिक मोहित जो रहते हैं तायाक, उनके नाम भी ये गाना जाएगा।
2: नजर की बात है
1: और 80s 90s का ये जो खूबसूरत गाना है,
2: नजर की बात,
1: एक प्यारी सी माताजी के लिए जो अपनी स्मॉल पॉकेट रेडियो से हमें सुन रही है। चलिए, थैंक यू सो

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: 8:21 हुए हैं। चलिए 80s और 90s के जो गाने हैं और यहाँ पर सैयारा जो पिछले साल रिलीज हुई थी ये फिल्म और टाइटल सॉन्ग खासकर प्रिया राम किलावन के लिए हम गाना चलाएंगे और अनीता राम धनी है गाना खासकर वो मांग रही है अपनी बहनों के लिए। जी हाँ, सुनीता और दीदा। विराज राम पारे है जो हमें सुन रहे हैं गाना, उनकी बीवी पूनम और बच्चे हैं आदित्य और आरान।

जी हाँ, जैसे कि हमने कहा है आज का दिन समाप्त होने वाला है और आप लोग सुन रहे हैं, और इस दिन को और खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा हमारे पास ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं आप लोगों के लिए हम पेश करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और जो सैटरडे है खूबसूरती से समाप्त हो रहा है। बहुत धन्यवाद। 8:22 सैयारा श्रेया घोषाल की आवाज़ में

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: कहते हैं ना, कभी हंसी कभी आंसू, यही तो जिंदगी का असली एंटरटेनमेंट है। जिंदगी को बोरिंग मत बनाओ दोस्तों, हर लम्हा थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ी सी खुशी जरूर होती है। बस लाइफ एक स्टेज है और हर इंसान अपना किरदार निभा रहा है। और यहाँ पर खास गाना हम चला रहे हैं निवेद के लिए, जो इस समय हमें सुन रहे हैं। साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग इस समय पार्टी कर रहे हैं ना घर पर, तो चलिए झूमिए हमारे साथ। हम यहाँ पर स्टूडियो अकेले हैं, लेकिन हमें पता है कि आप लोग साथ दे रहे हैं और इस सफ़र में हम सफ़र बनकर साथ देना, बहुत धन्यवाद।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: जी हाँ, जिंदगी में हंसना भी जरूरी है, गाना भी जरूरी है और नाचना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सीरियस लेने के लिए नहीं, एक्सपीरियंस करने के लिए मिली है। और हर दिन एक नई

स्टोरी है और हम सब अपनी फिल्म के हीरो हैं, ये बात आप कभी भूलिएगा नहीं। 8:10 हुए हैं, बचना ए हसीनो। चलिए ये खास गाना हम चलाएंगे तरुण राम के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच दिया, बहुत धन्यवाद आपको। और मिस्टर राकेश है, गाना मांग रहे हैं उनकी एम्बुलेंस टीम के लिए। इसका मतलब इस समय आप लोग काम कर रहे हैं तो हम आपको कहते हैं बो कुराज। और होलैंड से हमें सुन रहे हैं सुंदर जी, बहुत धन्यवाद आपको। लच्छम आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे। किशोरदा की आवाज़ में

8:40 हुए हैं और दीप्ति गंडावरी के लिए गाना हम चलाने जा रहे हैं ऐ मेरे हमसफर विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में और साथ ही साथ में रांची गाना मांग रही है अपनी बेटी तनुषी के लिए जो इस समय रिवीजन कर रही है एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए तो उनको हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक धनवंती चिट्टू जो गाना मांग रहे हैं रोहन किशन और उनकी मामा के नाम

0: RM3 Radio. Radio.
1: आज बजकर 47 मिनट हुए हैं विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाजों में जी हाँ 90s स्पेशल और यहाँ पर हमारे सभी 90s लवर्स के लिए जी हाँ हम गाना चला रहे हैं और आश्विन नाना जो हमें सुन रहे हैं उनके नाम और अजमेर खान जी हाँ जो प्यार में पर गए हैं उनके लिए हम ये गाना चला रहे हैं और साथ में नीतेश माथुर जो है जो हमें सुन रहे हैं माधुरी जी आपके लिए भी ये गाना जाता है कमला सिम सिम है जो सुन रही हैं देख भी रहे हैं बहुत ही रोमांटिक गाना है फना फिल्म से लिया गया

आरती जी, जी हाँ आरती जी गाना मांग रही हैं हस्बैंड स्वराज के लिए। और जैसे कि हमने कहा है, आप लोग का साथ है तो हमें और क्या चाहिए। और आशा जी जो है गाना मांग रही हैं अपने पति सत्यम के नाम।

8:53 हुए हैं और ये गाना जाएगा लचम शाम लच शाम सी गोविंद के लिए और साथ ही साथ में हमारे सभी लिसनर्स जिन्होंने साथ दिया है। इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम यही समाप्त हो चला। आपने साथ दिया, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और MBC रेडियो के साथ हमेशा जुड़े रहिए। उषा को दीजिए इजाज़त, नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
3: रविवार 17 मई घड़ी मिला लीजिए रात के 9:02 हुए था। रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर आप सबको एक स्वागत बातें और यहाँ पर ही हमने चलाल है जहाँ हमें सुमी और अभी से लेके रात के 11 बजे ले एक भोजपुरी तड़का ये कार्यक्रम में आप सबको एक मनोरंजन होए भोजपुरी गीत संगीत आशा करे थे जहाँ आप सबको अच्छा हुआ जा और जिन सप्ताहांत था बहुत अच्छा से बीते था। तो चले जा यहाँ पर ही सग बजाई कार्यक्रम में भाग ले अपन पसंदीदा भोजपुरी गीत के फरमाइश करे अपन परिवार खातिर अपन दोस्त लोग खातिर सग बजा उनकर पसंदीदा भोजपुरी गीत के मांग करे हमने के जो नंबर है वह 4028085 और सग बजा व्हाट्सएप करे मैसेज विदा करे 5251700005 पर। और चला जा आज के जो भोजपुरी तड़का ये कार्यक्रम है एकरा हमने शुरू करत है जा कुणाल बाबूलाल जी के गावल ई गीत संगे।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: चले जा भाई बहन लोगों को भोजपुरी तड़का ही कार्यक्रम से जुड़ल हवा जा आप सबको के बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर ही आप सबको के पसंदीदा गीत यहाँ पर ही आप सबको के फरमाइश पर हमने आप सबको के नाम करत है जा और अगला गीत की ओर हम भी बढ़ब जा। किशोर खेमिया जी के गावल गीत है जलसा लाल बा और ये गीत के फरमाइश खास कर आल बाते भाई विजय जी की ओर से। भाई विजय इ बखत नाइट शिफ्ट करते करते काम करते करते हमने के संगे जुड़ल हवन कार्यक्रम के सुनत हवन। ये गीत उनकर ओर से सब बेनी पौसात परिवार खातिर सब दुली परिवार खातिर यह गीत उनकर खास संगतिया शास्त्री बोनोमाली जी खातिर और इनकर पूरा परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का
1: जी हाँ, भोजपुरी तड़का ये कार्यक्रम गमट जलसा हुआ था। रात के 9:25 हो गल बातें। बहुत बहुत धन्यवाद 4028085 पर हमने के संगे जुड़ल हवा जा। और यहाँ पर अगला गीत की ओर हमने बढ़ जा। अगला जन गीत है सोना नयन जी के गावल गीत है साधु के भेस में। और ये गीत के फरमाइश आल बातें बेलिया से भाई आत्माराम जी की ओर से। और भाई आत्माराम जी ये गीत मंगले हवन खासकर बहन प्रभावती, बहन लालिता, बहन छोटी और ये बहन सुदेवी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का।
1: चला जाए यहाँ पर ही देखते देखते रात के 9:38 हगल बातें भोजपुरी तड़का में अगला गीत की ओर हमने बढ़ब जा। अगला गीत भोजपुरी बॉयज़ के गावल गीत है और ये गीत के फरमाइश आल बाते पालमा से भाई माहिन की ओर से। भाई माहिन ये भगत हमने के सुनत हवन और ये गीत मंगले हवन सब जगमोहन परिवार खातिर। यह गीत खास कर उनकर दीदी मान खातिर और हमने के पूरा टीम खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भाई माहेन। और ये गीत जितना श्रोता ये वक्त हमने के संगे जुड़ल हवन ये गीत उनकर ओर से सबको खातिर।
0: भोजपुरी तड़का तोहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का भोजपुरी तड़का एक प्रोग्राम और यहाँ पर ही चला जा हमने अगला गीत की ओर बढ़ब जा और यहाँ पर ही अगला जो गीत है खास कर हमने करब जा खास कर ये गीत यहाँ पर ही कुमारी जी की ओर से कुमारी जी की ओर से सब पौमा परिवार खातिर पौमा परिवार के यहाँ पर ही नया मेहमान आल बाते गुप्परी आल बाते तो यहाँ पर ही गीत उनकर ओर से खास कर दादी प्रतिमा दादा कृष्ण मामा प्रशांत माँ पापा प्रशांत माँ शौकत और यहाँ पर पूरा परिवार है पौमा परिवार है और हस्ताबिया परिवार है और ये गीत उमंगले हवन सबको खातिर

कैसे के दादा दादी लोग अभी आवत हो जा। अगर नाना नानी कब से बैठल बा। थरिया आना जाहो थरिया थरिया।

0: भोजपुरी तड़का
1: घड़ी में लाले जा रात के 10 बज गल बातें भोजपुरी तड़का के दूसर घंटा में आप सबको के स्वागत बातें रात के 11 बजे लेके चली प्रोग्राम और यहां पर इतना फरमाइश हमने के मिला था आप सबको के फोन कॉल आप सबको के मैसेज खातिर बहुत-बहुत धन्यवाद और चला जाए यहां पर ही अगला गीत की ओर हमने बढ़ जा और ये जो अगला गीत है चंद्रदेव जीवदन जी के गावल गीत है सुयाग से श्रीमती जी हमने के संगे जुड़ा हवन और अगला जन गीत है मंगले हवन अपन सब बेटा बहू बेटी दामाद खातिर खासकर सब चंद्रमुनी परिवार खातिर जोनी बखत भोजपुरी तड़का ही कार्यक्रम सुनत हवन

0: भोजपुरी तड़का
1: और चला जाए यहाँ पर भोजपुरी तड़का में। अगला गीत यहाँ पर संतोष महादेव जी के गावल गीत है, मरमिट में गर्म पानी। और ये गीत खास कर फरमाइश आल बातें मौदाल बेयर से अनीता जी की ओर से। अनीता जी बखत हमने के संगे जुड़ल हवन और ये गीत उनकर ओर से करुणा अमृता सब हितू परिवार खातिर, सब लाल जी परिवार खातिर और सब महादिया परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का
1: चले जाए यहाँ पर आप सबको के फरमाइश पर आप सबको के पसंदीदा भोजपुरी गीत यहाँ पर ही चला था भोजपुरी तड़का ही कार्यक्रम में। और ये बाड़ बजा में अगला गीत की और आबेदानंद बेजान जी के गावल गीत है फोंजी साख से उमा जी ये गीत मंगले हवन संस्कृति हमारी और ये गीत उनकर ओर से उनकर सब परिवार खातिर और उमा जी ये गीत खासकर आपके खातिर

तो देवी जी आपके खातिर वाकवा से हमने के संगे जुड़ल हवन, उनकर ओर से गीत दीदी लालिता खातिर सब कुशल परिवार, भाई आत्माराम, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, विमल, वर्षा, निया, वीर, मालिंगा के सभी राम रतन परिवार, सभी राम गुलाम परिवार और सब कुवारू परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का
1: एक के साथ भोजपुरी तड़का की अंतिम गीत की ओर हमने बढ़ जा और ये अंतिम गीत के साथ आज के भोजपुरी तड़का ये कार्यक्रम समाप्त हो जाए। आप सबको एक साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर ये जन है भोजपुरी तड़का ये कार्यक्रम 11 बजे समाप्त हो जाए और फिर 11 बजे सक बजा सुने सुनहरे पली प्रोग्राम गिनीशा की प्रस्तुति में और रात के 12 बजे से काल फजीर लेकर आप सबको एक मनोरंजन खातिर गीत जन है यहाँ पर ही चलते रही। तो हमने क्या किया था, नमस्कार और शुभ रात्रि आप सबको के।
0: भोजपुरी तड़का

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनिशा का प्यार भरा प्रणाम। फिर से एक बार आ गई हूँ मैं आप सभी लोगों का साथ निभाने के लिए इन दिस ब्यूटीफुल शो, और ये है आपका सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। जी हाँ दोस्तों, हर पुराना गाना अपने साथ लाता है एक नई मुस्कान। आज के शो में हम बात करेंगे उन गीतों की जो जिंदगी जीना सिखा देते हैं, प्यार बांटना सिखा देते हैं और हर पल को खास बना देते हैं। तो चलिए बस तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सी सफर में, हमारा हम सफर बनने के लिए।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, लेकिन ओल्ड बॉलीवुड गाने, ओल्ड बॉलीवुड गाने का जो जादू है ना, वो कभी कम नहीं होते हैं। आज हम फिर से सजाएंगे यादों की महफिल, जहां हर सुर दिल को छूकर एक नई उम्मीद दे जाएगा। बिल्कुल जी, ये है आपका सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। थैंक यू सो मच जी, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सभी लिसनर्स का, जो बड़े प्यार से, शिद्दत से हमारा साथ दे रहे हैं।

पुराने बॉलीवुड के गीत सिर्फ म्यूजिक नहीं, एक इमोशन है मेरी जान। आज की इस खास म्यूजिकल शाम में हम लेकर आए हैं वो नगमे जो हर दिल को सुकून देंगे और हर चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। तो चलिए जी, जितने भी लोग फिलहाल काम पे हैं, आपको हम विश करना चाहेंगे बोकोराज। ये खूबसूरत सा नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: Yeah.

तो चलिए हमारे प्यारे प्यारे म्यूजिक लवर्स, जिंदगी के सफर में कभी कभी थोड़ा रुक कर पुरानी यादों को महसूस करना भी बहुत ही जरूरी होता है, और इसीलिए हम लेकर आए हैं ओल्ड बॉलीवुड गाने का ये प्यारा सा कलेक्शन एंड सिलेक्शन सिर्फ आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप दिल से उसे एंजॉय कर रहे हो, आप दिल से बस महसूस कर रहे हो हर एक गाने को। तो चलिए जी, ये अगला नगमा हमारी तरफ से आपके नाम।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: वैसे देखा जाए तो आज का शो उन लोगों के नाम जो पुराने गानों में अपनी दुनिया ढूंढ लेते हैं, उन सुरों के नाम जो हमें जीना, हंसना और प्यार करना सिखा देते हैं। तो अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और महसूस कीजिए ये पुराने बॉलीवुड का असली जादू जो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सो हियर वी गो, ये खासकर आपके लिए और आपकी उन खूबसूरत यादों के नाम।

चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशातू से गुड बाय टू यू. जी हाँ, आप हमें इजाजत दीजिए ताकि हम दोबारा वापस आ सके एक और खूबसूरत सुनहरे पल के शो में. तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना.

dance.

0: जल्दी उठाओ,
1: तस्वीर लाकर
0: इधर लगाओ। हाँ लगाओ।